0: বন্দনা শুনিলে। খন্তেক পিছতে ছয় বজাত হিন্দী আৰু 6:05 ইংৰাজীত বাতৰি দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
1: আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে ফরহত নাজ। बिहार और असम की राज्य सरकारों ने नीट यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ दर्ज मामले और अन्य कानूनी कार्रवाई वापस लेने का फैसला किया है। बिहार के गृह विभाग ने आश्वासन दिया है कि वे 26 जुलाई को शाम 6 बजे से पहले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी प्राथमिकी आपराधिक शिकायतें और कारण बताओ नोटिस वापस लेने की कानूनी प्रक्रिया तुरंत शुरू करेगा। आधिकारिक बयान के अनुसार समय सीमा से पहले दर्ज मामलों के संबंध में गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को तुरंत रिहा कर दिया जाएगा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे से पुनः शुरू होगी। कल नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। मॉनसून सत्र के लगातार 6 दिन भी नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी वापस लेने की विपक्ष की मांग के कारण कल संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। विपक्ष के हंगामे के बीच कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुच्छेद साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने दे रहे।
2: पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ आंसर मीन इतना इम्पोर्टेंट बिल लेके आया है तो कांग्रेस की हमने अपील किया, फिर भी नहीं मान रहे हैं। हमने लोकसभा में भी बताया और यहाँ भी कहा टाइम अलॉटेड है। कांग्रेस वाला बताते हैं कि पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं और यहाँ हम हाथ जोड़ जोड़ के कहते हैं कि आप बोलिए।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने खिलौना क्षेत्र को समर्थन देने और वर्ष 2032 तक वैश्विक खिलौना बाजार में भारत की हिस्सेदारी 5% तक करने के लिए कार्यबल के गठन की घोषणा की है। वे नई दिल्ली में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT द्वारा आयोजित खिलौना क्षेत्र से संबंधित हितधारकों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। पर्यटन मंत्रालय ने एयर इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य प्रतिष्ठित इक्रेडिबल इंडिया ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देना है। ये समझौता कल नई दिल्ली में पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में हुआ। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा है कि पंचायती राज संस्थाएं भारत की लोकतांत्रिक और विकास यात्रा की आधारशिला हैं। श्री सिंह ने नई दिल्ली में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम और समर्थ पंचायत पोर्टल का शुभारंभ करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये पहल विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप आर्थिक रूप से सशक्त, तकनीकी रूप से सक्षम और आत्मनिर्भर पंचायतों के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया है कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को जांच दल में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर शामिल करने का निर्देश दिया है। SIT 2 सप्ताह में पहली स्थिति रिपोर्ट पेश करेगी। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस खबर का खंडन किया है जिसमें ये दावा किया गया था कि केंद्र सरकार अगले महीने की 25 तारीख की रात से भारत में इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगाएगी। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को निराधार बताया है और कहा है कि सरकार द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। इकाई ने नागरिकों को केवल आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करने की सलाह दी है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने चीन यात्रा के दौरान पेइचिंग में चीन के उप विदेश मंत्री हुआ चेंगयिंग से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। विदेश सचिव ने भारत और चीन के बीच साझेदारी की दृष्टि को आगे बढ़ाने और व्यापार तथा आर्थिक संबंधों में पारस्परिक रूप से लाभकारी विकास के अवसरों पर भी चर्चा की। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के दौरान मतदान के दिन हुई हिंसक झड़पों में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बताया कि उसके कार्यकर्ता मुख्तार यूनुस की मौत हो गई है और 2 अन्य घायल हो गए हैं। पहले एक दिन के लिए निर्धारित ये चुनाव अब आज से 10 अगस्त तक 3 चरणों में होंगे। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी ने चुनाव का बहिष्कार किया है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की शर्मिला धनकर ने महिलाओं की पैराशॉट पुट F57 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। पांचवें दिन के अंत तक भारत के पदकों की संख्या 10 हो गई है, जिसमें 2 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani. The news read by Neena Rakel. State governments of Bihar and Assam have decided to withdraw cases and other legal proceedings initiated against people who participated in protests over the alleged NEET UG examination irregularities. Bihar State Home Department assured that it will immediately initiate the legal process to withdraw all first information reports, FIRs, criminal complaints and show cause notices against agitators registered before 6 p.m. on 26th of July. As per the official statement, persons arrested or detained in connection with cases filed prior to the deadline will be released immediately. The government also guaranteed that no future direct or indirect action will be taken regarding incidents before the cut-off time. Assam's Home and Political Department also informed that cases had been registered in Assam in connection with the protests, resulting in the arrest of 13 persons. However, the state government has decided that no adverse legal action will be initiated by any of the police authorities within the state against those persons who have been involved in these protests. Foreign Secretary Vikram Misri met with Hua Chunying, Vice Minister of Foreign Affairs of China in Beijing, and reviewed the entire gamut of bilateral relations. Mr. Misri also discussed means of advancing the vision that India and China are partners. According to the Embassy of India in China, both officials also acknowledged the importance of maintaining peace and tranquility in the India-China border areas. Earlier in the day, Mr. Misri discussed ways to enhance bilateral exchanges between India and China at the political and people-to-people levels during his meeting with Ho Liang, Deputy Secretary General of the 14th National Committee of the Chinese People's Political Consultative Conference CPPCC in Beijing. The External Affairs Ministry summoned the Ukrainian ambassador to India, Dr. Oleksandr Polishuk, yesterday, following the attack on commercial vessel MV Omorphi, in which an Indian national was killed. Conveying its serious concern over the incident, the ministry condemned such attacks on commercial shipping in the strongest terms, underscoring their adverse impact on the safety of maritime navigation, freedom of navigation, and international commerce. The External Affairs Ministry said in a statement that the ambassador was requested to convey to the Ukrainian authorities India's strong concerns over the targeting of commercial vessels. The ministry reiterated that such actions endanger the lives of innocent civilian seafarers, are unacceptable and must be avoided. The Ministry of Tourism has signed a Memorandum of Understanding with Air India to promote India as a preferred global tourism destination under the iconic Incredible India brand. The agreement was signed in New Delhi in the presence of Union Tourism and Culture Minister Gajendra Singh Shekhawat. The collaboration aims to leverage Air India's extensive domestic and international network along with Ministry's destination promotion initiatives to enhance India's global tourism visibility. Under the MOU, the Ministry and Air India will undertake joint promotional campaigns, co-branded destination marketing and tourism storytelling across digital and offline platforms. In the Commonwealth Games, India's Sharmila Dhankar clinched the nation's second gold medal, winning the women's shot put F57 final.

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर

0: मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के बढ़ते निजी अंतरिक्ष तंत्र की सराहना की। विक्रम 1 की सफलता के बाद स्काई रूट के संस्थापकों से की मुलाकात। बिहार और असम सरकारें नीट प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामले वापस लेंगी। विभिन्न आरोपों में गिरफ्तार प्रदर्शनकारी भी रिहा किए जाएंगे। एनडीए संसदीय दल आज नई दिल्ली में अपनी साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक करेगा। पर्यटन मंत्रालय ने अतुल्य भारत ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए एयर इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत और चीन ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व को दोहराया। और भारत की पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं की शॉटपुट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्काई रूट एरोस्पेस के पवन चंदना और नागा भरत डाका से बातचीत की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि विक्रम 1 की सफलता के साथ साथ कई अन्य रोचक विषयों पर भी चर्चा हुई। विक्रम 1 भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा विकसित ऑर्बिटल रॉकेट है। प्रधानमंत्री ने उनकी यात्रा और भविष्य की योजनाओं के बारे में सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि उनकी ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और सकारात्मकता देश के निजी अंतरिक्ष तंत्र की जीवंत भावना को दर्शाती है। श्री मोदी ने स्काई रूट एरोस्पेस की पूरी टीम को शुभकामनाएं भी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में भी विक्रम 1 की सफलता की सराहना की थी।
4: विक्रम 1 इसके सफल लॉन्च से हर देशवासी गौरव से भरा हुआ है। ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा इनोवेटर्स ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। उन्होंने गजब के स्किल, पैशन और पेशेंस दिखाया। लंबे समय तक हमारा स्पेस सेक्टर निजी क्षेत्र के लिए बंद रहा था। इस सेक्टर में रुचि रखने वाले काफी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। युवा हित को देखते हुए हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। आज इसका परिणाम दुनिया देख रही है।
3: बिहार और असम की राज्य सरकारों ने नीट यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ दर्ज मामले और अन्य कानूनी कार्रवाई वापस लेने का फैसला किया है। ब्योरा हमारी संवाददाता से।
5: गृह विभाग की ओर से जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार 26 जुलाई की शाम 6 बजे तक राज्य के किसी भी हिस्से में विरोध प्रदर्शन में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध कोई दंडात्मक, प्रतिशोधात्मक या प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस अवधि तक दर्ज सभी प्राथमिकी, परिवाद और कारण बताओ नोटिस वापस लेने की विधिक प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ की जाएगी। इसके साथ ही इन मामलों में गिरफ्तार या निरोधित सभी व्यक्तियों को जल्द रिहा किया जाएगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इन में नामित व्यक्तियों के खिलाफ भविष्य में भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। सविता पारिक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
3: उधर असम के गृह विभाग ने बताया है कि विरोध प्रदर्शनों के संबंध में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदर्शनों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ राज्य की किसी भी पुलिस प्राधिकरण द्वारा कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि सरकार का विरोध प्रदर्शनों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कोई और प्रतिकूल कार्रवाई करने का प्रस्ताव नहीं है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक आज सुबह संसद भवन में आयोजित की जाएगी। मंगल मिलन के नाम से प्रचलित ये बैठकें पारंपरिक रूप से संसद सत्र के दौरान मंगलवार को आयोजित होती हैं। इन बैठकों का उद्देश्य गठबंधन की पूर्ण एकता का प्रदर्शन करना है। पिछली बैठक इसी महीने की 21 तारीख को हुई थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में भविष्य की परीक्षाओं में पेपर लीक को रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से समन्वित प्रयास करने का आह्वान किया था। तृणमूल कांग्रेस से अलग हुए गुट नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया के सांसदों को भी गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा है कि पंचायती राज संस्थाएं भारत की लोकतांत्रिक और विकास यात्रा की आधारशिला हैं। श्री सिंह ने नई दिल्ली में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम और समर्थ पंचायत पोर्टल का शुभारंभ करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये पहल विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप आर्थिक रूप से सशक्त, तकनीकी रूप से सक्षम और आत्मनिर्भर पंचायतों के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
4: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पर्यटन मंत्रालय ने एयर इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य प्रतिष्ठित अतुल्य भारत ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देना है। एक रिपोर्ट।
2: ये समझौता कल नई दिल्ली में पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में हुआ। इस सहयोग का लक्ष्य एयर इंडिया के व्यापक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के साथ साथ मंत्रालय की पर्यटन स्थल प्रचार पहलों का लाभ उठाकर भारत की वैश्विक पर्यटन क्षमता को बढ़ाना है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये साझेदारी एयर इंडिया के व्यापक वैश्विक नेटवर्क और भारत के विविध पर्यटन विकल्पों का लाभ उठाकर प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में देश की उपस्थिति को मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि इस सहयोग के अंतर्गत संयुक्त गंतव्य अभियान और स्टॉप ओवर पर्यटन को बढ़ावा देने सहित विजिट इंडिया पास जैसी पहलों पर विचार किया जाएगा। समझौते के अंतर्गत मंत्रालय और एयर इंडिया डिजिटल और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर संयुक्त प्रचार अभियान, सह ब्रांडेड डेस्टिनेशन मार्केटिंग और पर्यटन संबंधी कहानियों का संचालन करेंगे। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने खिलौना क्षेत्र को समर्थन देने और वर्ष 2032 तक वैश्विक खिलौना बाजार में भारत की हिस्सेदारी 5% तक करने के लिए कार्यबल के गठन की घोषणा की है। वे नई दिल्ली में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा आयोजित खिलौना क्षेत्र से संबंधित हितधारकों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। श्री गोयल ने विनिर्माण, नवाचार और निर्यात को मजबूत करने के उद्देश्य से तैयार खिलौना क्षेत्र प्ले बुक का भी शुभारंभ किया। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि केंद्र सरकार अगले महीने की 25 तारीख की रात से भारत में इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगाएगी। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को निराधार बताते हुए कहा है कि सरकार द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने चीन यात्रा के दौरान पेचिंग में चीन की उप विदेश मंत्री हुआ चुनयिंग से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। विदेश सचिव ने भारत और चीन के बीच साझेदारी को आगे बढ़ाने और व्यापार तथा आर्थिक संबंधों में पारस्परिक रूप से लाभकारी विकास के अवसरों पर भी चर्चा की। चीन में भारतीय दूतावास के अनुसार दोनों अधिकारियों ने भारत चीन सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व को भी स्वीकार किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थानीय चुनावों के दौरान मतदान के दिन हुई हिंसक झड़पों में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। पीपल्स पार्टी ऑफ पाकिस्तान ने बताया है कि उसके कार्यकर्ता मुख्तार यूनिस की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए। ये चुनाव जो मूल रूप से एक दिन के लिए निर्धारित थे, अब 8 से 10 अगस्त तक 3 चरणों में आयोजित किए जा रहे हैं। पीपीपी और पीएमएलएन ने कई निर्वाचन क्षेत्रों में एक दूसरे पर चुनावी धांधली का आरोप लगाया है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी ने चुनावों का बहिष्कार किया है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, ओडिशा, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दक्षिण आंतरिक तथा तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर पूर्व भारत के कुछ हिस्सों, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, झारखंड, केरलम, माहे, कोंकण और गोवा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज दिन में मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने आज राज्य के अलग अलग हिस्सों में तेज से बहुत तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के अनेक हिस्सों में कल रात से बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, उधमसिंह नगर, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल जिलों के कुछ स्थानों पर भारी बारिश और गर्जन के साथ बिजली चमकने की संभावना जताई है। विभाग की चेतावनी के मद्देनजर राजधानी देहरादून, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, चमोली और बागेश्वर में आज सभी स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली लगभग 50 सड़कें बंद हैं, जिन्हें खोलने का कार्य जारी है। हालांकि चारधाम यात्रा मार्ग फिलहाल खुले हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में मानसून सक्रिय रहेगा। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: भारत की पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के शॉटपुट F57 स्पर्धा में 9.81 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीता है। शर्मिला राष्ट्रमंडल खेलों के पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी हैं। इस अवसर पर शर्मिला ने कहा कि वे देश के लिए पदक लाकर बहुत प्रसन्न हैं।
4: हम बहुत खुश है हमारे देश के लिए मेडल लाके, हम आगे भी ऐसे ही मेडल लाते रहेंगे और नेक्स्ट कॉमनवेल्थ की अच्छी तैयारी करेंगे। इस मेडल से मेरे आगे का रास्ता और आसान हो गया और अच्छी मेहनत करके और अच्छा रिकॉर्ड बनाऊंगे।
1: सर्वेश कुशारे ने पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में रजत पदक जीता है। भारत के पदकों की संख्या अब 10 हो गई है। राष्ट्रपति और खेल मंत्री ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
5: धन्यवाद प्रियंका। पेपर लीक पर सख्ती से जुड़ा विधेयक लोकसभा में पेश होने की खबर आज नवभारत टाइम्स और जनसत्ता सहित सभी अखबारों की प्रमुख खबर है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, पार्टियां राजनीतिक नफा नुकसान के गणित में जुटी, हंगामे के बाद विपक्ष चर्चा को राजी। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, 10 साल जेल, 10 करोड़ जुर्माने का प्रस्ताव, आज बहस संभव। दैनिक जागरण की खबर है, जंतर मंतर पर प्रदर्शन को हिंसक बना रहे अपराधी, 989 की हुई पहचान। पत्र ने प्रदर्शन का प्रोटोकॉल शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, ये अच्छा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जहां पुलिस की सख्ती पर सवाल उठाए हैं, वहीं पुलिस कर्मियों पर हमले का संज्ञान भी लिया है। पत्र ने कहा है कि उचित ये होगा कि न्यायालय ये सुनिश्चित करे कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के नाम पर अराजक तत्व बचने न पाए। अमर उजाला ने वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का बयान प्रकाशित किया है, देश में जल्द ही 10 और 20 रुपए के पॉलीमर यानी प्लास्टिक नोटों का परीक्षण शुरू हो सकता है, आरबीआई के प्रस्ताव को सरकार ने दी मंजूरी। हिंदुस्तान ने लिखा है, 100 करोड़ से अधिक आय वाले करदाताओं की संख्या 5 वर्ष में 4 गुना बढ़ी। सरकार ने कहा, समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने से आय में बढ़ोतरी के संकेत सामने आए हैं। सूर्यास्त के बाद कल दिखेगा बकमून का आकर्षण, शबाब पर होगा चांद। हिंदुस्तान ने बताया है, दूधिया रोशनी बिखेरता हुआ पूर्ण चंद्र बकमून की शक्ल में नजर आएगा, प्रत्यक्षित चंद्र घटनाओं में से एक नग्न आंखों से भी देख सकेंगे।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के बढ़ते निजी अंतरिक्ष तंत्र की सराहना की। विक्रम 1 की सफलता के बाद स्काई रूट के संस्थापकों से की मुलाकात। बिहार और असम सरकारें नीट प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामले वापस लेंगी। विभिन्न आरोपों में गिरफ्तार प्रदर्शनकारी भी रिहा किए जाएंगे। एनडीए संसदीय दल आज नई दिल्ली में अपने साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक करेगा। पर्यटन मंत्रालय ने अतुल्य भारत ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए एयर इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। और भारत और चीन ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व को दोहराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। The headlines. Prime Minister Narendra Modi hails India's growing private space ecosystem, meets Skyroot Aerospace founders after Vikram 1 success. Bihar and Assam governments to withdraw cases against NEET protesters and release those arrested under various charges. NDA parliamentary party to hold its weekly Mangal Milan meeting in New Delhi today. Tourism Ministry signs MOU with Air India to promote India as preferred global tourism destination under Incredible India brand. India and China reaffirm importance of maintaining peace and tranquility along border. And India's para-athlete Sharmila Dhankar wins gold medal in women's shot put event at the Commonwealth Games. Prime Minister Narendra Modi interacted with Pavan Chandna and Naga Bharat Dhaka of Skyroot Aerospace. In a social media post, Mr. Modi highlighted that the success of Vikram 1 featured prominently in the discussion, along with several other interesting topics. The Prime Minister expressed happiness after hearing about the journey and insights into the future plans. He said the energy, ambition and positivity reflect the vibrant spirit of India's private space ecosystem. Mr. Modi also extended his best wishes to the entire Skyroot aerospace team. In his Mann Ki Baat program also, Prime Minister praised the success of Vikram 1.
7: पिछले रविवार विक्रम 1 इसके सफल लॉन्च से हर देशवासी गौरव से भरा हुआ है। हम सभी भारतीय स्पेस सेक्टर के इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा इनोवेटर्स ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। उन्होंने गजब की स्किल, पैशन और पेशेंस दिखाया। लंबे समय तक हमारा स्पेस सेक्टर निजी क्षेत्र के लिए बंद रहा था। इस सेक्टर में रुचि रखने वाले काफी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। युवा हित को देखते हुए हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। आज इसका परिणाम दुनिया देख रही है।
6: बिहार एंड असम गवर्नमेंट्स हैव डिसाइडेड टू विथड्रॉ केसेस एंड अदर लीगल प्रोसीडिंग्स इनिशिएटेड अगेंस्ट पीपल हु पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट ओवर नीट एग्जामिनेशन। Bihar's Home Department assured that it will immediately initiate the legal process to withdraw all FIRs, criminal complaints and show cause notices against agitators registered before 6 p.m. on the 26th of July. We have more from a correspondent.
8: According to a public notice issued by the Home Department, no punitive, retaliatory or adverse legal action will be taken against any person who participated in the protest held anywhere in the state to 6 p.m. on 26 July. The legal process to withdraw all first information reports, complaints and show cause notices registered during this period will be initiated immediately. The government has also announced that all persons arrested or detained in connection with these cases will be released at the earliest. It has further clarified that no direct or indirect action will be taken against the individuals named in these cases in future. Savita Parikh, Akashwani Samachar, Patna.
6: Assam government has decided to withdraw all criminal cases registered in connection with NEET protests. Authorities have also been instructed to review all arrests and detentions made in connection with these cases and expedite the release of the arrested persons. After reviewing the circumstances surrounding the protest and taking into account the need to strengthen accountability and undertake systemic reforms in the examination and higher education ecosystem, the state government decided not to pursue further legal action against those involved. According to the order, no adverse legal action will be initiated by any police authority in Assam against persons who participated in the protests. The government also directed that the process for withdrawing all the registered cases, irrespective of the stage of legal proceedings, should be initiated promptly in accordance with the law. The National Democratic Alliance NDA Parliamentary Party's weekly strategy meeting known as Mangal Milan will be held in the Parliament House this morning. The meetings are traditionally held on Tuesdays during Parliament sessions with an aim to demonstrate complete alliance unity. The meeting last took place on the 21st of this month when Prime Minister Narendra Modi had called for coordinated efforts by all stakeholders to prevent paper leaks in future examinations across the country. The Prime Minister has also reiterated the government's commitment to ensuring strict action against those involved in recent NEET examination paper leaks and safeguarding the interests of the country's youth. MPs from Trinamool's breakaway faction, the newly formed Nationalist Citizens Party of India, NCPI, have also been invited to attend the alliance meeting. The Minister of Tourism signed a Memorandum of Understanding, MOU, with Air India to promote India as a preferred global tourism destination under the iconic Incredible India brand. The agreement was signed in New Delhi in the presence of Union Tourism and Culture Minister Gajendra Singh Shekhawat. The collaboration aims to leverage Air India's extensive domestic and international network along with the ministry's destination promotion initiatives to enhance India's global tourism visibility. Under the MOU, the Ministry and Air India will undertake joint promotional campaigns, co-branded destination marketing and tourism storytelling across digital and offline platforms. In a social media post, Mr. Shekhawat said the partnership will leverage Air India's extensive global network and India's diverse tourism offerings to strengthen the country's presence in key international markets. He said that the collaboration will include joint destination campaigns, promotion of stopover tourism and exploration of initiatives such as a Visit India Pass. The government has announced the setting up of a task force to support the toy sector and help India achieve a 5% share in the global toy market by 2032. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal made the announcement while addressing a stakeholder meeting on the toy sector organized by the Department for Promotion of Industry and Internal Trade, DPIIT, in New Delhi. The Ministry of Commerce and Industry said that the task force will focus on integrating the country's toy industry with global value chains, strengthening manufacturing capabilities, and improving ease of doing business. On the occasion, Mr. Goyal said the growth of India's toy industry reflects the country's progress towards the goal of Viksit Bharat. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. India and China have reaffirmed the importance of maintaining peace and tranquility along border during Foreign Secretary Vikram Misri's meeting with Hua Chunying, Vice Minister of Foreign Affairs of China, in Beijing yesterday. The discussions between them focused on strengthening bilateral ties, expanding exchanges, and advancing cooperation in trade, culture, and people-to-people relations. They reviewed the entire gamut of bilateral relations. They discussed ways to advance the vision of the two leaders that India and China are partners in development. Early in the day, Mr. Misri discussed ways to enhance bilateral exchanges between India and China at the political and people-to-people levels during the meeting with Hong Liang, Deputy Secretary General of the 14th National Committee of the Chinese People's Political Consultative Conference, CPPCC. Mr. Misri began his official visit to China on Monday with a meeting with Sun Haiyan, Vice Minister of the International Department of the Central Committee of the Communist Party of China. In Uttarakhand, the Meteorological Department has issued a warning of heavy to very heavy rainfall in different parts of the state today. Our correspondent reports that continuous rainfall since last night has led to road blockages at several locations across the state.
3: Intermittent rain has continued across Dehradun and many other parts of Uttarakhand since last night. The Met Department has forecasted heavy to very heavy rainfall accompanied by thunderstorms and lightning at isolated places in the districts of Uttarkashi, Dehradun, Tehri, Rudraprayag, Chamoli, Udham Singh Nagar, Bageshwar, Pithoragarh and Nainital. Heavy rainfall with thunderstorm is also likely at isolated places in the remaining districts of the state. In view of weather warning, all schools and Anganwadi centers in Dehradun, Pauri, Rudraprayag, Pithoragarh, Chamoli and Bageshwar have been declared closed for today. Continuous rainfall has raised the water levels of rivers and mountain streams in the hilly areas. Nearly 50 rural roads remain blocked and restoration work is underway. However, the Chardham Yatra routes are currently open and the administration is closely monitoring the situation. Sakshi Singh, Akashvani News, Dehradun.
6: The deep depression of the Bay of Bengal is poised to cross the North Odisha coast this morning, heralding another spell of intense rainfall across the state. The Indian Meteorological Department has sounded a red alert for Mayurbhanj, Sundargarh and Keonjhar districts and an orange alert for 22 others of Odisha till 8:30 this morning. The Odisha government has stepped up preparedness with schools in Bhadrak remaining closed for today as a precaution. The disaster response teams on standby and citizens have been advised to strictly follow official advisories. In Kerala, rain is likely to intensify across the northern districts with the weather department issuing yellow alert for 6 districts. Yellow alert indicating isolated heavy rainfall is in effect in Ernakulam, Thrissur, Mallappuram, Kozhikode, Kannur and Kasargod districts. Wayanad and Kottayam districts, which were under yellow alert last night, are not under rain warning today. According to the India Meteorological Department, isolated heavy rain will continue over northern parts of the state until Friday. Yellow alert has been issued for 6 districts for tomorrow also. India's para-athlete Sharmila Dhankar has won the gold medal in women's short put event at the Commonwealth Games in Glasgow last night. We have more from a correspondent.
9: With this achievement, Sharmila also became India's first ever Commonwealth Games Para-Athletics gold medalist. Her triumph ended India's 20-year wait for a para-athletics medal at the Games. Union Youth Affairs and Sports Minister Dr. Mansukh Mandviya congratulated Sharmila Dhankar, saying that her indomitable spirit has made the entire nation proud on the global stage. Indian high jumper Sarvesh Kushare also clinched a silver medal in the men's high jump event at the Scotstoun Stadium. Competing in the final, Kushare cleared 2.25 meter before three unsuccessful attempts at 2.28 meter saw him settle for silver behind Jamaica's Romain Beckford, who claimed gold. Sports Minister Dr. Mandviya congratulated Sarvesh, noting that his phenomenal performance that has made the entire nation proud. Moreover, weightlifters Valluri Ajaya Babu and Ganeshwari Yadav clinched a silver each as India enjoyed another productive day at the Games. Valluri Babu narrowly missed the gold in the men's 79kg competition after finishing just 1kg behind Malaysia's Mohammad Eri Hidayat. Earlier in the day, Ganeshwari opened India's account on the second day of competition by claiming silver in the women's 53kg event on her CWG debut. Short putter Shilpa Shaila also secured a dramatic bronze medal in the women's short put F57 event after a successful post-match protest and review stripped Nigeria's Yukeria Iyazi of her valid mark. With this, India's total medal count stands at 10, including 2 gold, 5 silver and 3 bronze at the Glasgow 2026 Commonwealth Games. Meanwhile, Indian boxer Lovlina Borgohain is already assured of a medal at Glasgow 2026 after receiving a quarter-final bye in the women's 75kg event. Chirag Jha from Sports Desk.
10: President Draupadi Murmu has congratulated Sharmila Dhankar on winning the gold medal in the women's short put F57 event at the Glasgow Commonwealth Games 2026. In a social media post, the president said that by becoming India's first ever Commonwealth Games gold medalist in para-athletics, Sharmila has achieved a landmark feat. The president also congratulated Sarvesh Anil Kushare for clinching the silver medal in the men's high jump event at the Commonwealth Games. Further, President Murmu congratulated Valluri Ajaya Babu on securing the silver medal in the men's 79kg weightlifting event. Prime Minister Narendra Modi has also congratulated Bindya Rani Devi Sorokhaibam for winning bronze in the women's 58kg event. And now for a look at today's newspapers, it's over to Nina Arakkal.
11: Thank you, Abhishek. After protest, Parliament to debate tougher paper leak bill, leads Hindustan Times. Pradhan resignation fails to break Parliament logjam as opposition blocks business, headlines The Statesman. The Pioneer in its editorial piece, A Digital Fix for a Crisis of Trust, says restoring trust in examination system demands a secure and tamper-proof architecture, and who better than Nandan Nilekani to help build it. India's weightlifters continue to do the heavy lifting, bring home 3 more Commonwealth Games medals, reports Hindustan Times. Kiyoko Higashino, who made Japanese crime fiction a global obsession, dies at 68, reports the Indian Express. And finally, the Odyssey nears $1 billion at global box office, reports Financial Express. Well, the paper says Christopher Nolan's The Odyssey is well on course to become another global box office blockbuster. And with that, it's back to you, Abhishek.
10: Thank you, Nina. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi hails India's growing private space ecosystem, meets Skyroot Aerospace founders after Vikram 1 success. Bihar and Assam governments to withdraw cases against NEET protesters and release those jailed under various charges. NDA Parliamentary Party to hold its weekly Mangal Milans meeting in New Delhi today. Tourism Ministry signs MOU with Air India to promote India as preferred global tourism destination under Incredible India brand. India and China reaffirm importance of maintaining peace and tranquility along border. And India's para-athlete Sharmila Dhankar wins gold medal in the women's short put event at the Commonwealth Games. And with that, we end the morning news. Have a nice day.

0: আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ খণ্ডক পিছতে 12 বজাত হিন্দীত আৰু 12:05 ইংৰাজীত বাতৰি দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सुबह लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने पैरा एथलीट शर्मिला धनखड़ को 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी। श्री बिरला ने सर्वेश कुशारे, वल्लूरी अजय बाबू और ज्ञानेश्वरी यादव को रजत पदक जीतने तथा शिल्पा शायला और बिंदिया रानी देवी को कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी। उन्होंने कनाडा में आयोजित विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप 2026 जीतने पर अनाहत सिंह की भी सराहना की। अध्यक्ष ने देश का नाम रोशन करने वाले सभी एथलीटों के साथ साथ कोच और उनके परिवार के सदस्यों को भी बधाई दी। बाद में श्री बिरला के प्रश्नकाल शुरू करने के प्रयास पर विपक्षी सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। अध्यक्ष ने सदन को सुचारू रूप से चलने देने का आग्रह किया ताकि सार्थक संवाद हो।
2: आज हम 2 बजे इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, ऐसा सभी लोगों ने सहमति व्यक्त की है। समय सरकार और प्रतिपक्ष बैठकर समय तय कर लेगा और मेरा आपसे आग्रह है, कितना भी गतिरोध हो, कितना भी बड़ा मुद्दा हो, लेकिन प्रश्नकाल में गतिरोध नहीं होना चाहिए। पूरे देश के अंदर एक सकारात्मक दिशा जाए कि संसद में चर्चा होती है।
1: राज्यसभा में भी हंगामा देखने को मिला। दिन में 11 बजे सदन के शुरू होने पर कई केंद्रीय मंत्रियों ने विधेयक सदन के पटल पर रखे। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। सभापति सीपी राधाकृष्णन के शून्यकाल शुरू करने पर विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए की संसदीय दल की साप्ताहिक बैठक संसद भवन में चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य नेता बैठक में शामिल हैं। तृणमूल से अलग हुए

पुर नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई के सांसद भी गठबंधन की बैठक में शामिल हुए। गठबंधन की पूर्ण एकता प्रदर्शित करने के उद्देश्य से संसद सत्र के दौरान ये बैठकें पारंपरिक रूप से मंगलवार को आयोजित की जाती हैं। पिछली बैठक इसी महीने की 21 तारीख को हुई थी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य की परीक्षाओं में पेपर लीक को रोकने के लिए सभी हितधारकों से समन्वित प्रयास करने का आह्वान किया था। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि हब एंड स्पोक मॉडल से वर्ष 2030 तक लगभग 4 लाख रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। श्री नायडू ने कहा कि सेवा के शुरू होने से अमृतसर से यात्री अब दिल्ली के रास्ते दुबई, सिंगापुर, बैंकॉक और पेरिस सहित लगभग 20 अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों से जुड़ सकेंगे। नागर विमानन सचिव समीर कुमार सिन्हा ने हब एंड स्पोक उड़ान सेवा का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिन्हा ने कहा कि मॉडल भारत के विमानन क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। मध्य प्रदेश के भोपाल में नवविकसित निषादपुरा रेलवे स्टेशन का लोकार्पण किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज शाम इसका उद्घाटन करेंगे। मालवा एक्सप्रेस और सोमनाथ जबलपुर एक्सप्रेस जैसी महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों का ठहराव भी अब निषादपुरा रेलवे स्टेशन पर होगा। आंध्र प्रदेश के चेल्लूरू में कल देर रात एक सड़क दुर्घटना में 8 वर्षीय बच्चे सहित 3 लोगों की मौत हो गई और 13 अन्य घायल हो गए। चेल्लूरू के पास रुके हुए वाहन पर विशाखापट्टनम से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज मामूली बढ़त देखी गई। सेंसेक्स 63 अंक बढ़कर 76,899 जबकि निफ्टी 24 अंक बढ़कर 24,020 पर कारोबार कर रहा था। भारत की पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के शॉटपुट F57 स्पर्धा में 9.81 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्रागज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289 मीटर 1035 किलोहर्ट्स और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्स पर। जो भाइयों, हमारे आज के प्रसारण में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

फौजी भाइयों, आपको बता दें उन कार्यक्रमों के बारे में जिन्हें आप आज के प्रसारण में सुनेंगे। अब से थोड़ी देर में हम लेकर आएंगे हमारा पहला कार्यक्रम फिल्म संगीत और 12:30 पर कार्यक्रम आज का गीत, 12:38 पर कार्यक्रम गीत अपना धुन पर आई, 1:10 पर कार्यक्रम एक ही फिल्म के गीत। उससे पहले आप सुनेंगे 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार।

1:40 पर कार्यक्रम भूले बिसरे गीत दिन के 2 बजे से बारी बारी से आप सुनेंगे अंग्रेजी और हिंदी में समाचार। दिन के 2:30 का समय है कार्यक्रम गुंजन का। इसी के साथ हमारे आज के प्रसारण का समापन होगा दिन के 3 बजे। फौजी भाइयों, इन्हीं कार्यक्रमों के साथ आज आपके साथ रहूंगी मैं गुना प्रभा बोरा।

फौजी भाइयों, लीजिए प्रस्तुत हमारा पहला कार्यक्रम फिल्म संगीत। फौजी भाइयों, यह है कार्यक्रम का पहला गीत, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में। फिल्म का नाम है गुलाम।

फौजी भाइयों लीजिए अब सुनिए शंकर महादेवन और सुनिधि चौहान से कार्यक्रम का आखिरी गीत दोस्ताना फिल्म से।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। फौजी भाइयों, लीजिए प्रस्तुत है हमारा दैनिक कार्यक्रम आज का गीत। आज इसके अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे जीरो फिल्म का एक गीत। इरशाद कामिल के लिखे इस गीत को संगीत दिया है अजय अतुल ने। आइए सुनिए गीत अभय जोधापुरकर की आवाज में।

फौजी भाइयों, हमारा अगला कार्यक्रम सुनवाने से पहले आइए आपको बता दें कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। कल बुधवार है, रोजाने की तरह हमारा कल का प्रसारण आरंभ होगा 12:10 पर। 12:12 पर आप सुनेंगे हमारा पहला कार्यक्रम फिल्म संगीत और 12:30 पर कार्यक्रम आज का गीत। बारह बजकर 38 पर कार्यक्रम फिल्मी नगमे, 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार, 1:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम तरंग, 1:40 का समय है कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत का।

दो बजे से बारी बारी से आप सुनेंगे अंग्रेजी और हिंदी में समाचार। दिन के 2:30 बजे का समय है कार्यक्रम प्रीत लड़ी का। इसी के साथ हमारे कल के प्रसारण का समापन होगा दिन के 3 बजे। फौजी भाइयों, ये थी कल के कार्यक्रमों की जानकारी। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले कार्यक्रम की ओर।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग्ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्स और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्स पर। फौजी भाइयों लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत अपना धुन पर आई। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं ऐतराज फिल्म के इस गीत से, जिसे गा रही हैं सुनिधि चौहान।

फौजी भाइयों, ये गीत सुनकर आपको पता चल गया होगा हमारी आज की फिल्म का नाम। जी हाँ, हमारी आज की फिल्म है वीर सारा, जिसका पहला गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर और रूप कुमार राठौर की आवाजों में। आपको बता दें, वीर सारा फिल्म साल 2004 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में शाहरुख खान, प्रीति जिंटा और रानी मुखर्जी ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। फिल्म का निर्देशन यश चोपड़ा ने किया था। अब सुनिए फिल्म का अगला गीत लता मंगेशकर और उदित नारायण से।

फौजी भाइयों, एक ही फिल्म के गीत कार्यक्रम के अंतर्गत वीर सारा फिल्म के इन गीतों को इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी गुवाहाटी के प्रागज्योतिषपुर और डिब्रूगढ़ केंद्रों से। अब सुनिए लता मंगेशकर को सोनू निगम के साथ।

0: कार्यक्रम का आखिरी गीत सुनिए लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाजों में।
1: एक दिन जब सवेरे सवेरे सुरमई से अंधेर की चादर हटा के एक पर्वत के तकिए से सूरज ने सर जो उठाया तो देखा दिल की वादी में चाहत का मौसम है और यादों की डालियों पर अनगिनत बीते लम्हों की कलियां महकने लगी हैं। अनकही अनसुनी आरजू आधी सोई हुई आधी जागी हुई आंखें मलते हुए देखती है लहर दर लहर मौज दर मौज बहती हुई जिंदगी जैसे हर पल नई और फिर भी वही हाँ वही जिंदगी जिसके दामन में कोई मोहब्बत भी है कोई हसरत भी है पास आना भी है दूर जाना भी है और ये एहसास है वक्त झरने सा बहता हुआ जा रहा है ये कहता हुआ दिल की वादी में चाहत का मौसम है और यादों की डालियों पर अनगिनत बीते लम्हों की कलियां

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। फौजी भाइयों, लीजिए अब प्रस्तुत कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं दो आंखें 12 हाथ फिल्म के इस गीत से, जिसे गा रहे हैं लता मंगेशकर और साथी।

0: राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। प्रदर्शनों के दौरान पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से संबंधित विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कई अंतरिम निर्देश जारी किए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और वी मोहना की पीठ ने प्रदर्शन वाले सभी राज्यों को निर्देश दिया कि वे सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन रिकॉर्डिंग, कैमरा फुटेज, वायरलेस संचार रिकॉर्ड, पीसीआर लॉग और प्रदर्शनों से संबंधित अन्य डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखें। न्यायालय ने आदेश दिया कि प्रदर्शनकारियों से एकत्र किए गए डिजिटल डेटा को सुरक्षित रखा जाए, लेकिन उसे सार्वजनिक न किया जाए। पीठ ने दिल्ली सरकार को दर्ज एफआईआर की जांच जारी रखने की अनुमति दी है, लेकिन कहा कि कार्यवाही लंबित रहने के दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। पीठ ने दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, केरल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों से याचिकाओं में लगाए गए आरोपों पर जवाब भी मांगा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर विचार विमर्श विधेयक पर चर्चा शुरू हो गई है। इस समय प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह चर्चा का जवाब दे रहे हैं। आइए सुनते हैं।
1: And for whatever interests. So I think you must compliment Prime Minister Modi and this government. It has finished an unfinished task which you should have accomplished.
0: राज्यसभा की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण आज दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद कार्यवाही फिर शुरू होने पर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इसका उद्देश्य सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में और संशोधन करना है। विधेयक पेश किए जाने के दौरान ही विपक्षी सदस्यों ने छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर उपसभापति हरवंश ने सदन की कार्यवाही आज दिनभर के लिए स्थगित कर दी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए की संसदीय दल की साप्ताहिक बैठक संसद भवन में हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य नेता बैठक में शामिल हुए। तृणमूल से अलग हुए गुट नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई के सांसद भी गठबंधन की बैठक में शामिल हुए। पिछली बैठक इसी महीने की 21 तारीख को हुई थी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य की परीक्षाओं में पेपर लीक को रोकने के लिए सभी हितधारकों से समन्वित प्रयास करने का आह्वान किया था। प्रधानमंत्री ने हाल ही में हुए नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने और युवाओं के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को भी दोहराया। भारतीय जनता पार्टी सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि एनडीए संसदीय दल की बैठक में सांसदों को भारत के विभिन्न देशों के साथ व्यापार और मुक्त व्यापार समझौतों से संबंधित घटनाक्रमों की जानकारी दी गई।
2: जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं दुनिया से, वो 2013-14 तक भारी हेवी ड्यूटी लगती थी, लेकिन आज ये जान करके खुशी होगी कि लगभग दुनिया के वो सभी विकसित देश भारत के साथ अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में है। आज जो बिल आ रहा है उस पर सभी लोग सकारात्मक रूप से भाग लें, विपक्ष से भी हम लोग अपेक्षा करते हैं डिस्कशन में भाग लें, उसको पास करें।
0: भाजपा राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने पंजाब में बार बार हो रही कथित पेपर लीक की घटनाओं को लेकर राज्य सरकार की आलोचना की और राज्य के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की।
3: पंजाब में पिछले 5 सालों में 6 मेजर पेपर लीक्स हुए हैं और चीटिंग स्कैम्स हुए हैं। अभी भी 19 जुलाई को पंजाब के फार्मेसी एग्जाम में बहुत मेजर चीटिंग हुई। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी पूरे जेंजी को ये बोलते हैं कि भाई सड़क पे आइए, नेपाल बनाइए भारत को, और जब पीसफुल प्रोटेस्ट युवा पंजाब में करते हैं तो उनपे बर्बरता से अरविंद केजरीवाल लाठी चलाते हैं। पंजाब के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनका हर हाल में रेजिग्नेशन होना चाहिए।
0: कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि विपक्ष लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2014

0: 24 में संशोधन करने वाले विधेयक पर लोकसभा में होने वाली चर्चा का इंतजार कर रहा है। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने पूरी व्यवस्था की समीक्षा और उसमें सुधार की आवश्यकता पर बल दिया।
1: ये बिल काफी है जो सरकार ने लेके आए हैं। सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्ट करने से या एक दो चीजें बदलने में क्या हमारे बच्चों के भविष्य बेहतर होने वाला है? बहुत सारे प्रश्न हैं। सरकार की अकाउंटेबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे सिस्टम को आप देखना चाहिए और बदलना चाहिए।
0: सरकार ने 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साइबर अपराध के मामलों में E0 FIR दर्ज करने की व्यवस्था शुरू की है। गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने बताया कि E0 FIR के तहत 12,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं।
2: गृह राज्य मंत्री ने कहा कि केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को साइबर अपराध के मामलों, खासकर साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में E0 FIR दर्ज करने के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है। उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था के अंतर्गत नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल और हेल्पलाइन 1930 के जरिए मामले दर्ज किए जाते हैं। इससे अपने आप में E0 FIR दर्ज हो जाएगी। इसके बाद इसे तुरंत संबंधित इलाके के साइबर अपराध पुलिस स्टेशन को भेज दिया जाएगा। श्री कुमार ने बताया कि शिकायतकर्ता को E0 FIR को नियमित FIR में बदलने के लिए 3 दिनों के अंदर संबंधित पुलिस स्टेशन जाना होगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पंजाब में अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज एयर इंडिया के इजी कनेक्ट हब एंड स्पोक मॉडल का शुभारंभ हुआ। इसके साथ ही पंजाब उत्तरी अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के 27 वैश्विक गंतव्यों से जुड़ गया है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापो राममोहन नायडू ने वर्चुअल माध्यम से सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आंकड़ों से पता चलता है कि हर साल लगभग 1.5 लाख यात्री अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए अमृतसर से दिल्ली की यात्रा करते हैं। इसी तरह लगभग 1.5 लाख यात्री विदेश से दिल्ली आते हैं और फिर अमृतसर की यात्रा करते हैं।
3: हब एंड स्पोक केवल एक एविएशन मॉडल नहीं है, यह एक अपॉर्चुनिटी मॉडल है। दिल्ली जैसे बनेगा हब और अमृतसर नॉर्थ इंडिया का इंटरनेशनल गेटवे बनेगा। पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, इन जैसे बड़े कैचमेंट एरिया आपको यहां से जुड़ेंगे। विदेशों में रहने वाले लगभग 3 करोड़ भारतीयों में करीब 1 करोड़ पंजाबी हैं। एयर कनेक्टिविटी जब बढ़ेगी तो उसका सीधा लाभ अमृतसर की अर्थव्यवस्था को भी पहुंचेगी और हब एंड स्पोक के माध्यम से हमारी एयरलाइंस की रेवेन्यू पर फ्लाइट भी बढ़ेगी।
0: नागर विमानन सचिव समीर कुमार सिन्हा और एयर इंडिया एयरलाइन के अध्यक्ष विपिन कुमार भी कार्यक्रम में उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि हब विमानन क्षेत्र के लिए सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इससे अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों तक यात्रा करने में आसानी होगी। इस शुरुआत के साथ अमृतसर से प्रतिदिन 2 इजी कनेक्ट उड़ाने शुरू हो गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज अपने कार्यकाल के 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति भवन में वर्चुअल माध्यम से विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्र के विकास और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के बारे में बात की।
4: इन 4 वर्षों में समावेशी विकास की सोच के साथ साथ देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व और आत्मगौरव की भावना को नई ऊर्जा मिली है। एक खुशी की बात है कि पिछले वर्ष ऐसे अनेक कार्य किए गए हैं जिनमें भारतीयता की भावना का विस्तार हुआ और हमने औपनिवेशिक मानसिकता के अवशोष को खत्म करने की ओर ठोस कदम उठाए हैं। विकास और जनसेवा की ये यात्रा निरंतर आगे बढ़ेगी तथा हम सब नए संकल्प और उत्साह के साथ अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर रहेंगे।
0: राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन के बच्चों के लिए बचपन बाल परिसर का भी उद्घाटन किया। इस पहल में किलकारी क्षेत्र और समर्थ आंगनवाड़ी सहपालन शामिल हैं। इस अवसर पर उन्होंने बाल परिसर में बच्चों से बातचीत भी की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज भारतीय तटरक्षक बल ICG कर्मियों और उनके परिवारों के लिए 2 महत्वपूर्ण नीतिगत सुधारों की जानकारी दी। इन नीतिगत सुधारों का उद्देश्य अधिकारियों की भर्ती और सेवा शर्तों में स्त्री पुरुष समानता को बढ़ावा देना है। झारखंड सरकार की नई दिशा नई पहल नक्सल विरोधी अभियान के तहत आज बड़ी सफलता मिली। कोल्हान और लातेहार क्षेत्र में सक्रिय 16 माओवादियों ने रांची में झारखंड पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करने वालों में एक रीजनल कमांडर, 3 जोनल कमांडर, 3 सब जोनल कमांडर, 6 एरिया कमांडर और 3 काडर सदस्य शामिल हैं। इनमें 15 लाख रूपये का इनामी रीजनल कमांडर संतोष वासुदेव भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम की सांसदों से मुलाकात की और राज्य के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट पर यह जानकारी साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार प्रभावित लोगों की सहायता के लिए असम सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। ओडिशा में मूसलाधार बारिश जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी में बने हवा के गहरे दबाव के कारण राज्य में तेज वर्षा हो रही है और बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।
5: मौसम विभाग ने अगले महीने की 2 तारीख तक पूरे राज्य में व्यापक बारिश और कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया है। बालेश्वर, भद्रक, मयूरभंज, केंदुझर और संबलपुर जिलों में आज सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रखे गए हैं। बालेश्वर शहर में पिछले 24 घंटे के दौरान लगातार बारिश के कारण 86 इलाकों में पानी भर गया और जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। जलका नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि कांसावंशा और गमई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से भद्रक जिले में बाढ़ की नई लहर आ गई है। राज्य सरकार ने जिला प्रशासन को 24 घंटा सतर्क रहने का निर्देश दिया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में आज अत्यधिक बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दक्षिणी जापान में आज एक शक्तिशाली भूकंप आया है। जापान की मौसम एजेंसी ने बताया है कि आज दोपहर कुमामोटो प्रांत में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया। एजेंसी ने अरियाके सागर और यात्सुशिरो सागर के तटों के लिए सुनामी की चेतावनी भी जारी की है। क्योशु रेलवे कंपनी ने कहा कि भूकंप के बाद क्योशु शिंकानसेन सहित सभी रेल सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। भारत के पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के शॉटपुट F57 में 9.81 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वर्ण पदक जीतने पर शर्मिला धनखड़ को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने 18 वर्ष से कम उम्र और बिना किसी आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया। राज्यसभा की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक पर चर्चा शुरू। एयर इंडिया ने अमृतसर हवाई अड्डे पर इजी कनेक्ट हब एंड स्पोक मॉडल शुरू किया है। झारखंड में 6 शीर्ष कमांडर सहित 16 माओवादियों का आत्मसमर्पण। सरकार ने 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साइबर अपराध के मामलों में E0 FIR दर्ज करने की व्यवस्था शुरू की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: जी, आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर, 1035 किलोहर्ट्स और DRM फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्स पर। फौजी भाइयों, हमारे इस प्रसारण में आप सभी का फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आइए अब आपको ले चलते हमारे कार्यक्रम गुंजन की ओर। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनिए ब्लैकमेल फिल्म का यह गीत किशोर कुमार की आवाज में।

0: अब बढ़ते हैं उस गीत की ओर जिसे हमने लिया है सीता और गीता फिल्म से, आवाजें आशा भोसले और किशोर कुमार की।
1: अरे अरे ए,

इन्हीं गीतों के साथ फौजी भाइयों गुंजन कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। दिन के 3 बजे से आप सुनेंगे FM रेनबो प्रसारित कार्यक्रमों को। सैनिक भाइयों के हमारे आज के प्रसारण का अब यहीं होता है समापन। कल 12:10 पर आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: आप सभी श्रोता मित्रों को कमल किशोर का नमस्कार। मित्रों, किसी शायर ने क्या खूब कहा है, जिगर बड़ा हो तो मंजिल भी झुक जाती है। जी हाँ, जिगर बड़ा हो तो मंजिल भी झुक जाती है, इरादों के आगे हर मुश्किल रुक जाती है। यानी किसी बड़े काम के लिए, मुश्किलों से जूझने के लिए जिगर का, यानी कि जिगरा का बड़ा होना बहुत जरूरी होता है, ये सभी जानते हैं। कलेजा होना चाहिए यह कहा जाता है। मेडिकल साइंस में, अंग्रेजी में इसे लीवर या हिंदी में यकृत कहा जाता है। और हम सभी जानते हैं कि लीवर, यकृत, जिगरा, ये मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है, आंतरिक अंग होता है और सबसे बड़ी ग्रंथि है। और वैसे लीवर में कई काम होते हैं, जैसे कि ये पित्त यानी कि बाइल बनाता है, भोजन और खासकर वसा को पचाने में मदद करता है, यह खून से हानिकारक और जहरीले पदार्थों को छानकर बाहर करता है। और इसीलिए लीवर का बिल्कुल स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। लीवर का अगर ख्याल ना रखें तो बीमारियों का डर भी बना रहता है कि कब कैसे क्या हो जाए। उनमें से एक है हेपेटाइटिस। तो मित्रों, आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है, आज मौका भी है और दस्तूर भी, सवाल तो बनता है ना जी। तो इसी विषय पर, यानी हेपेटाइटिस विषय पर जानकारियों के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है दो डॉक्टर्स को, दो एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर संजीव सहगल जी, आप हेपेटोलॉजी एंड लिवर ट्रांसप्लांट एंड प्रेसिडेंट लिवर ट्रांसप्लांट सोसाइटी ऑफ इंडिया 2025 के वाइस चेयरमैन और हेड हैं। और दूसरे एक्सपर्ट है डॉक्टर गोविंद मखारिया जी, आप एम्स न्यू दिल्ली में डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में प्रोफेसर हैं। हम आप दोनों का स्वागत करते हैं, नमस्कार करते हैं।
2: नमस्कार।
3: नमस्कार जी, नमस्कार।
1: तो आप हमारे एक्सपर्ट से परिचित हो चुके हैं और इस वक्त आप सवाल पूछ सकते हैं और डायल कर सकते हैं, इसी वक्त अपने डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। तो हमारा नंबर नोट कर लीजिए, हमारा नंबर है 2342-1080 और दूसरा फोन नंबर है 2342-1082। और इन दोनों नंबर से पहले दिल्ली का स्टडी कोड 011 यानी कि 011 जरूर डायल कीजिएगा। और हाँ, आप व्हाट्सएप मैसेज के जरिए भी हमसे सवाल पूछ सकते हैं, यानी डॉक्टर से सवाल पूछ सकते हैं, जानकारियां ले सकते हैं। और उसके लिए हमारा नंबर नोट कर लीजिए, व्हाट्सएप नंबर 9868107070। जी हाँ, एक बार नंबर फिर से हम दोहराए देते हैं, फोन नंबर 011-2342-1080 और दूसरा फोन नंबर है 2342-1082 और व्हाट्सएप मैसेज के लिए 9810707070।

0: जी
1: कैसे लिवर को खराब, सिरोसिस, लिवर कैंसर और
0: जी
1: भी प्रॉब्लम करता है
0: जी बहुत सारी
1: जी।
0: जी
1: तो इस तरह से हेपेटाइटिस को अगर हम समझे तो एक एक ब्रॉड अम्ब्रेला समझते हैं और इस सारे कारण उसके इंपॉर्टेंट रीजंस हैं।
0: जी डॉक्टर गोविंद जी, आजकल बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में कहा जाता है कि जो संक्रमण का दर जो होता है वो कुछ बढ़ जाता है, तो इस संक्रमण के चलते भी क्या हेपेटाइटिस हो सकता है?
2: कमल जी, एब्सोल्युटली यस। जब बरसात होती है तो पानी जल्दी दूषित हो जाता है,
0: जी
2: जो पानी पीने का आता है।
0: जी
2: अगर आपने फिल्टर नहीं किया प्रॉपरली पानी को,
0: जी
2: तो फिर वो उससे इन्फेक्शन हो जाती है। दो तरह की इन्फेक्शन होती है। पहला इन्फेक्शन की जो मोस्ट वायरल इन्फेक्शन होती है, वायरल, तो वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस,
0: जी
2: पेट की आंतों का इन्फेक्शन होता है, उससे डायरिया होता है और वो 3-4 दिन में ठीक हो जाता है।
0: जी
2: कभी कभी इन्फेक्शन जो होता है वो हेपेटाइटिस ए का भी होता है और ई का भी होता है। तो 5 वायरस होते हैं, जैसे कि सैगल ने बताया कि हेपेटाइटिस वायरस से होता है। देयर 5 वायरसेस, हेपेटाइटिस ए और ई, जो 2 वायरस है वो वाटर से होते हैं, वाटर कॉन्टेमिनेशन से।
0: जी हाँ
2: और जो बी और सी होते हैं, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, वो ब्लड से होते हैं, ब्लड या थ्रू सेक्सुअल रूट होते हैं। तो ड्यूरिंग बरसात में हेपेटाइटिस ए वायरस और ई वायरस की इन्फेक्शन हो सकती है,
0: मतलब ज्यादा संभावना बनी रहती है।
2: एब्सोल्युटली यस।
0: जी डॉक्टर साहब, कुछ अपनी बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे लेकिन एक फोन कॉल लेते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, सुनते हैं, जानते हैं कि उनकी क्या समस्या है। हेलो
3: हेलो,
0: जी नमस्कार।
3: नमस्कार, मैं सतीश बोल रहा हूँ गाजियाबाद से।
0: जी
3: 5 साल पहले मैंने अपने एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड कराया था, तो 7-8 मिलीमीटर का स्टोन था गॉल ब्लैडर में।
0: जी
3: 2 साल पहले फिर रिपीट कराया, सेम साइज का सॉलिटरी स्टोन है। क्या मुझे सर्जरी के लिए सोचना चाहिए या कोई सिम्टम नहीं है, मेरे को पेन वगैरह कुछ नहीं होता है?
0: सतीश जी, वैसे हमारा ये जो प्रोग्राम है हेपेटाइटिस पे है और हेपेटाइटिस पे अगर आप सवाल पूछें तो अच्छा रहेगा। खैर आपने पूछा है तो डॉक्टर हमारे पास एक्सपर्ट मौजूद है ही, थोड़े से जवाब दे देंगे।
1: सतीश जी आपकी उम्र कितनी है?
3: 78।
1: देखिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट सवाल है कि इसको हम कहते हैं एसिम्प्टोमेटिक गॉल स्टोन, मतलब आपके बॉडी में स्टोन पाया गया गॉल ब्लैडर में लेकिन कोई सिम्टम आपको नहीं है और आपकी एज ऑन हायर एज साइड है, 78 है। तो मोस्टली क्या होता है कि अगर सिम्टम नहीं है, बिल्कुल कंफर्टेबल है, आपको कुछ और इश्यू नहीं है, उसके जस्ट एक रूटीन स्क्रीनिंग में आ रही है, तो ये अनिवार्य नहीं कि इसका आप सर्जरी कराएं।
0: जी
1: इसको आप सिंपली रेगुलर ऑब्जर्वेशन रख सकते हैं। सेम प्रॉब्लम अगर किसी यंग किसी में आती है इंडिविजुअल में, मुझे पता है कि मेरा कोई एक पेशेंट है, कोई पायलट है, उसको फ्लाई करना पड़ता है, यू नो इंटरनेशनल फ्लाइट लेनी पड़ती है, उसको गॉल स्टोन है, यू नो 10 सेंटीमीटर 10 mm का। उसमें क्या होता है कि उसमें उसके लिए कई बार एक इलेक्टिव सर्जरी करी जाती है, जहां पर लगता है कि उसके अगर प्रॉब्लम आ गई तो उसको हम उस कॉम्प्लिकेशन को हम नहीं अलाउ करेंगे। लेकिन आई थिंक दैट इन योर केस, आपके केस में हमें इसको ऑब्जर्व करना चाहिए, कुछ डायटरी प्रिकॉशन लें, आप ऑयली फ्राइड फैटी चीज कम खाएं और अपना यू नो रूटीनली जैसे किसी डॉक्टर के निगरानी में रहें, पर मैं इसको ऑपरेशन की सलाह इस समय नहीं दूंगा।
0: जी डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी, और अपने सभी श्रोताओं को हम बता दें कि आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है और इस विषय पर यानी कि हेपेटाइटिस के विषय पर आप सवाल पूछिए और जानकारी लीजिए। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे दो डॉक्टर्स, डॉक्टर संजीव सहगल जी और डॉक्टर गोविंद मखारिया जी। हेलो, हम एक फोन कॉल लेते हैं। हेलो
4: हेलो
0: जी नमस्कार।
4: मेरा नाम राजेंद्र है और मैं करमपुरा दिल्ली से ही बोल रहा हूँ। 48 वर्ष मेरी उम्र है
0: जी।
4: तो सबसे पहले तो एंकर साहब और दोनों डॉक्टर साहिबान को तहे दिल से नमस्कार।
0: नमस्कार
4: जी। मेरे 3 सवाल हैं। मैं लगभग गालिबन 5 महीने से ये पेट की प्रॉब्लम से जूझ रहा हूँ। लीवर के आसपास मेरे को क्या होता है, खाना खाने के बाद ना मैं पहले मैं 4 फुलके खाया था, अब एक ही फुल्का खा पा रहा हूँ, तो लीवर के आसपास दाईं तरफ गर्मी जलन गैस हो जाती है। अब मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि ये मुझे जो है ये हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम है लीवर में, या लीवर फैटी है, या लीवर में अल्सर हो गया है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ और गैस ही बहुत बनती है। और दूसरा, अगर मैं इसके लिए ये लीवर सिरप आते एक दवा, अगर मैं उसका सेवन करूँ तो क्या ठीक रहेगा? और इसके लिए मैं डॉक्टर साहब तीसरा सवाल कि इसके लिए मैं जो है ये इनो आती है, लिमका आती है और आंवले का और ये क्या नाम है बेल का शरबत आता है, उसका सेवन कर रहा हूँ तो मुझे टेम्पररी रिलीफ तो मिलता है पर परमानेंट नहीं मिल पा रहा, तो प्लीज गाइड करें, बड़ी मेहरबानी होगी।
0: जी डॉक्टर
2: राजेंद्र जी, आपके तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। पहले बता दूं आपको मैं कि लीवर में अल्सर नहीं होता है और लीवर में अगर थोड़ी सूजन हो उसे कोई सिम्टम नहीं होता है, उससे कोई तकलीफ, अगर लीवर बढ़ भी गया आपका तो थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो सकता है, थोड़ा पेन हो सकता है आपको, पर उससे गैस नहीं बनती है। तो पहली बात जो लीवर को पता करने की लीवर बीमारी है या नहीं है उसके लिए कुछ टेस्ट करने पड़ते हैं जिसको हम कहते हैं लीवर फंक्शन टेस्ट या एक अल्ट्रासाउंड करते हैं उसके लिए। ना आप अब आते हैं आपके सिम्टम में। आपने बताया कि आपके पेट में बाएं तरफ दाएं तरफ में दर्द होता है या थोड़ा या फिर खाने का पेट फूल जाता है आपका, ये कॉमन प्रॉब्लम है जिसे हम लोग कहते हैं डिस्पेप्सिया। और इसके बहुत से कारण होते हैं। अगर आपके स्टमक में या फिर या जोड़ना में छोटी आंत में अल्सर हो वो सिम्टम हो सकते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम उसमें अगर हम एग्जामिन करें पूरे सिस्टम को तो नॉर्मल आता है वो, और दिस कॉल्ड फंक्शनल डिस्पेप्सिया। तो मुझे लगता है कि आपको दवा लेंगे, एसिड कम करने की दवा आती है, आप किसी फिजिशियन से मिले जो आपके डॉक्टर पास घर के पास में उनसे मिले वो दवाइयाँ लिखेंगे और इसका इलाज संभव है। मुझे लगता नहीं कि वो बहुत बड़ी बीमारी है। और लीवर के लिए अगर सिंस आप डॉक्टर पर जाएंगे तो लीवर टेस्ट जरूर कर लीजिएगा, लीवर फंक्शन टेस्ट और पेट का अल्ट्रासाउंड।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब अपने सभी श्रोताओं को हम ये बताना चाहेंगे क्योंकि जब भी हम बातचीत करते हैं तो मेडिसिन की बात जरूर आती है, ट्रीटमेंट की बात
1: है। वो लिवर टॉनिक वाला ना लें, वो आप जो ले रहे हैं वो आप बिल्कुल उसको ना लें, ऐसे कोई टॉनिक नहीं होती है। ये लोगों का एक भ्रम है कि हम ले पी ली और आप बेटर हो जाएंगे, तो कृपया करके बिना किसी एडवाइस के मेडिकल एडवाइस के ऐसी कोई लिवर टॉनिक मत लें।
0: जी यानी कि डॉक्टर साहब का कहना यह है कि सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी ना करें, अपने आप कोई भी दवाई ना लें। और जब तक अच्छा ये बताइए कि डॉक्टर साहब इन्होंने जैसे कहा कि इनके पेट में राइट साइड में जलन होती है और इन्होंने सीधे सीधे उसे लीवर से जोड़ दिया, क्या ऐसे हर समय संभव हो सकता है कि जलन हुई और लीवर में ही प्रॉब्लम हुई, ऐसा तो नहीं है?
2: ऐसा नहीं होता। लीवर इसे बताया कि लीवर में अगर सूजन हो रही है ना तो कोई सिम्टम नहीं होते
0: जी।
2: तो ये भी बता दूं अभी आपको, ये अच्छा मौका बताने का कि हमारे शरीर के अंदर में जितने भी ऑर्गन्स हैं उसमें ह्यूज कैपेसिटी है
0: जी।
2: भगवान ने हमें भर भर के दिया है और हमें बहुत कम चाहिए उसका, हर एक ऑर्गन का। तो अगर वो ऑर्गन किसी कारण से खराब हो रहा है, मान लीजिए हेपेटाइटिस बी हो गया, हेपेटाइटिस सी हो गया, या अल्कोहल की लत लगे हुए हैं, साल साल अल्कोहल पी रहे हैं, या कोई ऐसा ऑटोइम्यून डिजीज हो गया उनको, तो लॉन्ग टर्म में 10-5 साल और ज्यादा वो सूजन चलती है, तब जाके लीवर खराब होता है।
0: अच्छा।
2: तब जाके उनके सिम्टम आते हैं। तो सिम्टम आती नहीं है, ये तो दिक्कत आती है कि सिम्टम नहीं आते। तो जब आते सब सिम्टम आते तब कुछ बचता नहीं है। तो इसीलिए बताया गया कि लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जिस ये जो बीमारियां हैं हम टेस्ट करके मालूम कर सकते हैं। अगर हम ब्लड टेस्ट करें या अल्ट्रासाउंड करें तो हमें मालूम चल जाता है कि लीवर में सूजन चल रही है, सिम्टम नहीं आएंगे, लेकिन ब्लड टेस्ट करेंगे तब वो पता चलेगा कि लीवर के अंदर सूजन चल रही है
0: जी।
2: तो ये बताया कि हर एक व्यक्ति को एट अबाउट 30 इयर्स ऑफ एज जो लीवर फंक्शन टेस्ट करना चाहिए, और भी ब्लड टेस्ट लाइक ब्लड शुगर करना चाहिए, बीपी की जांच करनी चाहिए, और ये जहां भी कोई एबनॉर्मलिटी आती है उसके इलाज प्रॉपरली हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है
0: जी। डॉक्टर साहब, डॉक्टर संजीव जी
1: जी,
0: ये हम जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि ये जो सिम्टम नहीं है तो काफी दिनों के बाद में इसका सिम्टम आता है, लेकिन डॉक्टर साहब इसमें सिम्टम का मतलब क्या है कि किस प्रकार के लक्षण नजर आएंगे, क्या किस प्रकार का फील होगा, किस प्रकार की परेशानी होगी?
1: हाँ, ये एक्चुअली बहुत एक इम्पॉर्टेंट आपका सवाल है और बहुत कॉमनली लोग पूछते हैं मेरे से। तो लिवर के सिम्टम को हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है जनरल नॉन स्पेसिफिक सिम्टम, एक होता है स्पेसिफिक सिम्टम जो लिवर से डायरेक्टली लिंक्ड है
0: जी।
1: तो बहुत से ऐसे सिम्टम है लिवर के बीमारी के शुरू में जो किसी और कारण से भी हो सकते हैं आप, राइट। जैसे सबसे पहले फटीग, कमजोरी आना, हरारत होना, आप थक जा रहे हैं, आप नॉर्मल जो आपकी विगर था वो नहीं आ रहा, आपको हल्की हल्की बॉडी मेचिंग होती है, आपको लगता है हल्का हल्का बुखार हो रहा है, या आपको लग रहा है कि भूख कम लग रही है, सबसे इंपॉर्टेंट आप भूख जो लगी थी नहीं लग रही है, आपकी बॉडी कुछ रैश आने लगे, कोई आपको निशान देखे बॉडी में आपने कुछ, एक तरह के जनरल एक सिम्टम आते हैं। वो क्या होता है कि ये चाहे लिवर की बीमारी हो, चाहे कोई और इन्फेक्शन हो, कोई और वायरल इन्फेक्शन हो, उसमें भी आ सकते हैं। तो इस स्टेज में ये बोलना मुश्किल है कि ये लिवर से लिंक्ड है, लेकिन आपको उस प्रॉब्लम है और आपको उस समय एक फिजिशियन को दिखाना चाहिए
0: जी।
1: लेकिन जो लिवर से डायरेक्टली लिंक्ड सिम्टम है, जैसे कोई कहता है मेरी आंख तो पीली हो रही है, यूरिन का रंग पेशाब, जो यूरिन कलर वो एकदम पीला आ रहा है, राइट, या उनके जो स्टूल्स होते हैं नॉर्मली वो क्ले कलर्ड हम कहते हैं उसको, या उसको राइट में पेट में दर्द हो रही है, पेट के दाहिने तरफ ऊपर दर्द हो रही है, पैरों में सूजन आ रही है, और जैसे प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ती है, किसी को खून की उल्टी आ सकती है, लैटरिन में ब्लड आ सकता है, पेट फूलने लगता है, पता चला कि पेट में पानी भर गया है, इस तरह बहुत सारे और

0: में जो लिवर से डायरेक्टली लिवर खराब होने के लक्षण है तो वो काफी, जैसे भी डॉक्टर गोविंद जी ने बताया कि ये एडवांस स्टेज में आते हैं, तो इसलिए सिम्टम जब आने लग जाते हैं तो नॉर्मली वो लिवर बीमारी ज्यादा आगे बढ़ जाती है
1: जी।
0: तो हमारा पूरा एफर्ट रहता है एज फिजिशियंस एज क्लिनिशियंस की हम उसको शुरुआत में ही पकड़ लें, अच्छी स्क्रीनिंग अच्छे प्रिवेंशन, ताकि ऐसी नौबत ना आए।
1: जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब एक फोन कॉल आ रहा है, उनसे बातचीत करते हैं। हेलो हेलो हेलो जी, बताएं अपना नाम बताएं प्लीज, आप कहां से बोल रहे हैं? आपकी आवाज थोड़ी समझ में नहीं आ रही है और कटकट के आ रही है जी, बताएं।
2: आ रही है अभी नहीं आ रही है?
1: हाँ आप बताइए आपका नाम बताएं।
2: यामीन, मैं यामीन बोल रहा हूँ, यामीन भाई रेडियो वाला
1: जी,
2: लोनी जिला का।
1: जी जी यामीन भाई,
2: बताइए। मैं जानना चाह रहा हूँ क्या जो नवजात शिशुओं की और बच्चों के लिए वैक्सीन है बाजार में, क्या
1: कौन सी स्कीम?
0: अच्छा नवजात शिशु और बच्चों के लिए
1: वैक्सीन। अच्छा वैक्सीन, वैक्सीन की बात कर। जी
2: जी हाँ जी हाँ जी, तो ये जानना चाह रहा हूँ।
0: ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। देखिए वैक्सीन बिल्कुल इंडिया के जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है UIP कहते हैं, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, उसमें बच्चे जो पैदा होते हैं इन द इन्फेंसी उनके एक पूरा प्रोटोकॉल बना हुआ है, हमारे गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया हुआ है। साथ ही हमारी जो इंडियन अकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स है IAP है, उसके भी एक बड़े क्लियर एक वो रूल्स बने हुए हैं। हम लिवर की अगर बात करें तो हर नवजात शिशु को, हम अब लिवर की बात कर रहे हैं हेपेटाइटिस बारे में, हर नवजात एवरी न्यूबॉर्न उसको वैक्सीनेशन होनी चाहिए हेपेटाइटिस बी की एट बर्थ। फिर उसका एक रूल होता है, उसका एक वो तीन डोज मिलती है, 1 month एंड 6 months, राइट? तो हर बच्चे को वैक्सीनेशन करना, ये हेपेटाइटिस बी का हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है UIP के अनुसार ये देना चाहिए।
1: जी डॉक्टर साहब,
0: एक और वैक्सीन है हेपेटाइटिस ए का, जो हालांकि इंडियन एकेडमी पेडियाट्रिक्स बताती है कि UIP में नहीं है, पर उसमें हम कहते हैं कि जो 12वें महीने में बच्चों को वैक्सीन मिलता है और उसके 6 महीने बाद एक और वैक्सीन मिलता है जो हेपेटाइटिस ए के लिए, ये भी IAP जो हमारी इंडियन एकेडमी पेडियाट्रिक्स है उसकी अकॉर्डिंगली दी जाती है। इस तरह से बिल्कुल बच्चों के लिए वैक्सीन है, और हेपेटाइटिस के वैक्सीन तो खास तौर से, आपने अच्छा सवाल पूछा और पता होना चाहिए लोगों को कि हेपेटाइटिस बी का और ए का वैक्सीन है बच्चों
1: जी डॉक्टर साहब। तो ये कहाँ अवेलेबल है और क्या इजीली अवेलेबल है, किसी हॉस्पिटल्स में किसी डिस्पेंसरीज में जाकर के ये किस प्रकार उसे ले सकते हैं?
0: जी हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन तो आजकल हर डिस्पेंसरी, हर गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट, हर जगह अवेलेबल है
1: जी।
0: इसमें कोई गांव में आप जाएंगे वहां पर भी जो वहां पर जो हेल्थ सेंटर्स हैं वहां निश्चित रूप से मिल जाएगा
1: जी। डॉक्टर साहब जब यहां पर इन्फेंट की बात होती है, एक नवजात शिशु की बात होती है, तो गर्भवती महिलाओं की भी बात हो जाए, और उनको कब किस प्रकार से हेपेटाइटिस का इंजेक्शन बी का ए का कब किस प्रकार की कौन सी इंजेक्शन लेनी चाहिए या टीकाकरण होनी चाहिए?
0: देखिए प्रेगनेंसी जो गर्भवती महिलाएं हैं उनका एक नॉर्मली एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो महिलाएं ने अपने लाइफ में जो जो वैक्सीन लेने चाहिए ले लिए होंगे, राइट? जैसे हम जो वैक्सीन प्रोग्राम जो होता है
1: जी,
0: उसके अलावा अलग से अगर उनके जो एंटीनेटल क्लिनिक में जो उनकी जो गायनेकोलॉजिस्ट देख रहे हैं वो कुछ बताते हैं आपको ये वैक्सीन अगर लेने हैं तो आपको लेने पड़ेंगे
1: जी।
0: बेस्ड ऑन दैट जो हमारा फोकस रहता है कि किसी महिला को हेपेटाइटिस बी अगर है फर्ज करिए, तो उसके लिए एक अलग स्पेसिफिक हमारा प्रोग्राम होता है बहुत इंपॉर्टेंट, कि अगर उस महिला के जो हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन से जो नवजात शिशु में ना वो वायरस आ जाए
1: जी,
0: उसके लिए होता है कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसको एक इम्यूनोग्लोबुलिन दिया जाता है प्लस उसके वैक्सीन की जाती है, तो ये फिर उसके जो डॉक्टर देख रहे होते हैं वो इसके लिए स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करेंगे, तो इससे नवजात शिशु को इन्फेक्शन नहीं होगा
1: जी। डॉक्टर साहब कुछ और फोन कॉल्स हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। हेलो
3: जी नमस्ते।
1: नमस्ते
3: जी, मैं छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो आकाशवाणी रेम्बो को मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगा, जो समय समय पर हमें डॉक्टर उपलब्ध कराते हैं और अच्छी जानकारी मिलती है, और इससे हमारे स्वास्थ्य में भी बेहतर कुछ होने की दिशा में मिलती है। और डॉक्टर साहब को भी मेरा नमस्कार।
4: नमस्कार
1: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमसे बातचीत करते हैं, सवाल पूछते हैं, ये हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि रहती है
3: जी। जी जी, मेरा प्रश्न ये है कि सर मुझे एसिड रिफ्लेक्स की समस्या हो गई है, तो गैस बहुत बनती है, रात को जब मैं सोता हूँ तो मुंह कड़वा हो जाता है और एक पीला पीला पदार्थ पेट से निकलता है, जो मतलब जो खाने वाला जो लिक्विड होता है वो जो बनता है पेट में वो लिक्विड मुंह में आ जा रहा है, जिस कारण से मुंह कड़वा हो जाता है, तो क्या ये लीवर की समस्या है?
1: जी डॉक्टर गोविंद जी,
4: ये पहली बात तो ये समस्या लीवर की नहीं है फॉर श्योर, जिसे हम लोग कहते हैं गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज। इसमें क्या होता है कि आपके जो पेट है जिसको हम स्टमक कहते हैं, स्टमक में एसिड बनता है और वही एसिड फूड पाइप में आता है, फूड पाइप इसोफेगस, तो जब भी एसिड फूड पाइप में आता है तब जलन सी होती है, और वही एसिड कभी कभी मुंह में भी आता है, उससे मुंह में करवाहट होती है और मुंह में पानी आता है एज ए पार्ट ऑफ रिफ्लेक्स। सो ये पूरी बीमारी का नाम है गैस्ट्रो इसोफेगियल रिफ्लेक्स डिजीज, और उसके लिए कुछ परहेज करने चाहिए आपको। पहली बात है, अगर आपका वजन ज़्यादा है तो वजन जरूर कम करें। दूसरी बात, खाने के बाद आप लेटे नहीं कम से कम 1.5 घंटे तक। तीसरी बात, आप अपने मील को डिवाइड कर दीजिए, स्मॉल एंड फ्रिक्वेंट मील्स, रादर देन 3 मील्स जो हम लोग खाते हैं जनरली, आप 4 या 5 मील लीजिए, लेकिन आप डिनर को थोड़ा सा छोटा रखिए। इसके अलावा अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग बंद करनी चाहिए। ये चीज़ तो करनी है जो हम सभी का सब करना चाहिए। उसके अलावा कुछ दवाइयाँ होती हैं जो कि पेट में एसिड की मात्रा कम कर देती हैं, और दवाइयाँ काफ़ी इफेक्टिव होती हैं। अगर वो दवा लेंगे आप 4-6 हफ्ते के लिए तो उम्मीद है कि 90% उम्मीद है कि आपके सिम्टम सही हो जाएंगे, लेकिन सिम्टम फिर हो आगे हो सकते हैं, तो फिर आगे दवा आपको दवा लेनी पड़ेगी। और साथ में ये भी बता दूँ कि जो सिम्टम आपके हैं वो अपने कंट्री में हर एक 100 में से 15 लोगों को होती है, मतलब एवरी 6th पर्सन को ये सिम्टम्स हैं, वेरी कॉमन है। और दिस मेनली बिकॉज ऑफ लाइफ स्टाइल, तो वजन कम रखें, स्मोकिंग करते तो स्मोकिंग बंद करें, खाने के बाद लेटे नहीं, डिवाइड योर मील इनटू स्मॉल एंड फ्रिक्वेंट मील्स, एंड कुछ दवाइयाँ लेनी चाहिए आपको इसके अलावा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब और हमारे इस श्रोता मित्र का भी। और एक और फोन कॉल। हेलो
5: जी, नमस्कारम।
1: नमस्कार
5: दीदी, गौतम मेरठ से बोल रहा हूँ।
1: जी गौतम साहब बताएं।
5: मेरा कहना है कि हमारा दिल्ली NCR में पूरे वर्ल्ड में फैटी लिवर के नंबर 1 मरीज है, लेकिन राहत की बात यह है कि जो हमारा हेपेटाइटिस है वो घट रहे हैं। तो इसके लिए मैं अपने जो हमारे चिकित्सक हैं उन्हें, स्वास्थ्य मंत्रालय और हमारी सरकार को बधाई देना चाहता हूँ। मेरा कहना है कि हाँ, मेरा पूछना है कि जब हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उसमें एक शब्द आता है हिपेटोमिगैली।
0: जी।
5: तो हिपेटोमिगैली क्या है? क्या ये फैटी लीवर ही है या कोई लीवर से संबंध बीमारी है? कृपया विस्तार से बताएं।
1: जी डॉक्टर साहब।
0: जी, संजीव जी। जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका, और इनफैक्ट ये जो टर्म आपने यूज किया है अक्सर लोग पढ़ते नहीं है, डॉक्टर्स तो पढ़ते ही हैं, पर इसका मतलब कि आप बहुत जागरूक हैं अपने अपने रिपोर्ट के बारे में, बहुत अच्छी बात है ये। हेपेटोमेगाली, मेगाली मीन्स बड़ा हो जाना, हेपेटो मीन्स लिवर, मतलब लिवर आपका बड़ा हो गया है। जो अल्ट्रासाउंड करते हैं तो उसमें कुछ पैरामीटर्स होते हैं, वो उसकी मेजरमेंट लेते हैं कि 12 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 16, वो उसको मेजर करते हैं। उनको लगता है कि ये कट ऑफ के बाहर है, तो बेस्ड ऑन आपकी एज और आप बच्चे हैं और एडल्ट हैं उसके अकॉर्डिंग वो लिखते हैं कि आपका बड़ा है। बड़ा होने का मतलब ये नहीं कि फैटी लिवर हर समय, फैटी लिवर उसका एक इम्पॉर्टेंट कारण है
1: जी।
0: उसके अलावा बहुत सारे कारण है कि लिवर बड़ा हो सकता है, लिवर के अंदर कोई ट्यूमर हो सकता है, लिवर में कुछ इन्फेक्शन हो सकता है, कुछ कहते हैं वो एक डिजीज होती है जहां पर लिवर के अंदर इन्फिल्ट्रेटिव डिजीज होती है, टीबी हो सकता है, बहुत सारे, और कई बार ये एक नॉन स्पेसिफिक फाइंडिंग होती है। तो मात्र हेपेटोमेगाली का टर्म आते उस अगर आता है तो उस पर आप ज्यादा चिंतित नहीं है, मोस्टली आपके डॉक्टर देख लेंगे इसका एग्जैक्ट कारण क्या है
1: जी,
0: और एक बार कारण पता चल जाएगा तो फिर उसका एग्जैक्टली इलाज कर सकते हैं।
1: यानी कि बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है।
0: नहीं, देखिए मरीज को ना परेशान होना नहीं चाहिए, लेकिन डॉक्टर्स उसको देख के अलर्ट हो जाते हैं कि इसके लिए क्या करना है हमें आगे
1: जी।
0: और अक्सर जैसे फैटी लिवर आया तो उसका सही इलाज हो सकता है और उसमें कुछ डरने वाली बात नहीं है।
1: जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर साहब हमारे पास कुछ मैसेजेस भी हैं, और ये मैसेज आया बहुत दूर से, 7 समंदर पार से कह सकते हैं, और ये है जोया मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से। डॉक्टर, फॉर फैटी लिवर व्हाट टू ईट एंड व्हाट नॉट टू ईट, व्हाट टू डू एज प्रिकॉशंस टू स्टॉप द लिवर गेटिंग मोर फैटी, do you think drinking hot water like tea in the morning and at night can help?
0: जी आपका थैंक यू, आपने इतनी दूर से क्वेश्चन पूछा, थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली अपने आप में पूरा चैप्टर है इसका आंसर
1: जी,
0: तो हम अगर उसको एक ब्रीफली अगर एड्रेस करें, सबसे पहले कि देखिए हम लोगों में जैसे अगर देखा जाए तो एवरी 1 in 4 हैज फैटी लिवर, कलीवर सिटीज में 30-40% लोगों में फैटी लिवर की एक प्रिवलेंस हो गई आजकल। तो उसके लिए जो अगर आप प्रिकॉशंस की बात करते हैं जो आपने पूछा है, तो डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी डाइट जो है उसमें डाइट और एक्सरसाइज, ये दो उसके कॉर्नर स्टोन्स हैं इसको ठीक करने।
1: डाइट और एक्सरसाइज,
0: हाँ जी। आप अगर इन दोनों पे आप अगर एड्रेस करते हैं तो आप समझिए कि आपने सबसे इंपॉर्टेंट काम कर लिया। दवाई बहुत नीचे आती है
1: जी,
0: और डाइट पे एक सिंपल सिस्टम है। जब फैटी लिवर होता है तो लोग डॉक्टर कारण ढूंढते हैं
1: जी,
0: कि आपको डायबिटीज है, क्या कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, क्या आपका वेट ज्यादा है, क्या आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा है, थायराइड में प्रॉब्लम है, तो अगर इस सारी प्रॉब्लम को देखते हैं, फिर देखते हैं डॉक्टर की इनमें से क्या क्या चीजें करेक्ट कर सकते हैं।
1: जी जी।
0: तो एक होती है कि आप जैसे जो फैक्टर्स आपके एसोसिएटेड बॉडी में उनका इलाज करें, डायबिटीज कंट्रोल करिए, कोलेस्ट्रॉल की दवाई लीजिए उसको कम करिए, एक्सरसाइज करिए, डाइट पे फिर आप क्या करें अपना लो फैट डाइट लें, अगर जितना हो सकते हैं अननेसेसरी कार्बोहाइड्रेट ना लें, और जैसे होता ना शुगर ही ड्रिंक, वाइट शुगर कहते हैं, प्योर शुगर, मैदा ये अच्छा नहीं, रिफाइंड शुगर ये अच्छा नहीं है, फाइबर की मात्रा बढ़ाएं, हेल्दी प्रोटीन लें, आप नॉन वेजिटेरियन ले सकते हैं, फिश चिकन बहुत अच्छा है, रेड मीट को अवॉइड करें, और अपनी टेक्निक ऑफ कुकिंग, ऑयली फ्राइड फूड को आप ना खाएं, उसको थोड़ा डिफरेंट वे में, लो कुकिंग ऑयल जिस तरह से कम मात्रा में ले, और सैचुरेटेड फैट को अवॉइड करें,
1: अवॉइड करें। जी डॉक्टर साहब, एक फोन कॉल भी है, उनकी समस्या सुन लेते हैं।
0: जी
1: हेलो
6: हेलो हेलो नमस्कार।
1: आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। हेलो
6: आवाज
1: जी बताएं आप, सवाल क्या है आपके?
6: हेलो
1: लगता है कि उनसे हमारा संबंध, हमारा कांटेक्ट टूट गया। डॉक्टर साहब, अभी डॉक्टर संजीव जी ने फैटी लीवर की बात की, तो फैटी लीवर का क्या गैस्ट्रो से कुछ संबंध है क्या?
4: एकदम पूरा संबंध है जी, पूरा संबंध है इससे। और फैटी लीवर, लीवर की बात, लीवर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन फॉर होल डाइजेस्टिव सिस्टम। हम जो भी खाना खाते हैं वो आंतों में अब्जॉर्ब होने के बाद में जाता है लीवर के अंदर जाता है, वहाँ उसकी मेटाबॉलिज्म होती है। तो लीवर इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। और जो एक बात तो संजीव कह रहे थे भी फैटी लीवर के बारे में, अगर उसको थोड़ा सा और विस्तार से बताएं कि ये तो बताया उन्होंने कि खाना क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, और एक सिंपल सी बात ध्यान रखें कि इज ऑल अबाउट

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
3: मंगल भवन मंगल हारी
4: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
5: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
6: आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज से प्रोग्राम है अल्फा जेन और बात कर रहे हैं हिंदी भाषा में करियर की उड़ान विषय को लेकर। मैं हूं आपके साथ सृजन। अब भाषा की बात करें तो हमारी भाषा हिंदी सिर्फ हमारे देश भारत की पहचान ही नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन मूल्यों, संस्कृति एवं संस्कारों की भी सच्ची संवाहक, संप्रेक्षक और परिचायक भी है। बहुत सरल है, सहज है, सुगम भाषा होने के साथ साथ ये दुनिया भर में समझने वाले, बोलने वाले और चाहने वालों की वो भाषा है जो कि काफी बड़ी संख्या में है। तो ठीक है, चलिए एक और नए करियर की बात करें। यदि आपकी हिंदी पर पकड़ मजबूत है ना, तो आप ट्रांसलेटर के तौर पर ट्रांसलेशन सर्विसेज अनुवाद सेवाओं में भी जुड़ सकते हैं। और इसके लिए कौन कौन से पोस्ट या डेजिग्नेशन हो सकती हैं? एक हो सकती है लिटरेसी ट्रांसलेटर, जी हाँ, किताबों, कहानियों और कविताओं का अनुवाद करना। साथ ही आप टेक्निकल ट्रांसलेटर के तौर पर भी जो कि कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जो कि कानूनी हैं या फिर कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, इंजीनियरिंग फाइल्स हैं, उनका भी ट्रांसलेशन कर सकते हैं। आप इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं उस टाइम पर जबकि कोई इंटरनेशनल सम्मेलन हो रहा है, कोई बैठक हो रही है, तो आप रियल टाइम इंटरप्रेटर के तौर पर भी काम कर सकते हैं। साथ ही आप देखते होंगे जब भी कोई फिल्म या फिर वेब सीरीज डॉक्यूमेंट्री आप देख रहे हैं तो डबिंग या फिर हिंदी में सबटाइटल आपके सामने आ रहे हैं, जी हाँ, तो ये काम भी कोई ऐसा व्यक्ति कर रहा है जिसकी भाषा पर मजबूत पकड़ है। तो आप इन सभी करियर्स को चुन सकते हैं और फिर से भाषा की तैयारी होनी चाहिए एकदम परफेक्ट।

आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 की फ्रीक्वेंसी दिल से दिल तक की, और बात कर रहे हैं अल्फा जेन प्रोग्राम में हिंदी भाषा में करियर की उड़ान को लेकर। तो देखिए, आप सभी वो जो कि कहीं ना कहीं अपनी राजभाषा हिंदी के वर्चस्व को कायम रखना चाहते हैं, कभी भी हिंदी बोलने में, पढ़ने में या काम करने में हिचकिचाए नहीं। ये हमारी अपनी भाषा है, इसको मजबूती देना, इसको आगे बढ़ाना और अपनी आने वाली पीढ़ी तक ले जाने की जिम्मेदारी हमारी ही है। कभी कभी हम किसी को दिखावे में या फिर कि नहीं, अगर हम यहाँ हिंदी बोलेंगे तो हमें कम आका जाएगा, ये बात पूरी तरह से दिल से निकाल दीजिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपनी भाषा को बोलने में, कहने में, लिखने में हमें गर्व होना चाहिए। तो मजबूती से तैयारी कीजिए यदि आप भी इस भाषा में अपने करियर को देखते हैं। तो चलिए, क्या कर सकते हैं, जब आप बहुत बेहतरीन तरीके से सीख चुके हैं तो क्यों ना इस परंपरा को आगे बढ़ाया जाए, भाषा को अपनी आने वाली पीढ़ी को सौंपा जाए। तो आप एक अध्यापक के तौर पर स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ाने के लिए कार्य कर सकते हैं, एक टीचर के तौर पर हिंदी अध्यापक अध्यापिका के तौर पर शुरुआत कर सकते हैं, आप ऑनलाइन भी भाषा सिखा सकते हैं। सिर्फ हमारे ही देश भारत में नहीं, कई अन्य देशों के जो

लोग हैं जो वहाँ के नागरिक हैं, यदि वो हिंदी भाषा सीखना चाहते हैं तो आपसे ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। तो हुआ एक बेहतरीन करियर ऑनलाइन शिक्षण का, और साथ ही अगर आप देखें तो आप एजुकेशनल और रिसर्च फील्ड में भी भाषा की मजबूत पकड़ के साथ काम कर सकते हैं। चाहे अब वो सिनेमा ही देख लीजिए, फिल्मों देख लीजिए, वहाँ पर जो भाषा है वो भी हिंदी में अगर इस्तेमाल की जा रही है, आप तक भी पहुँच रही है, हम देख भी रहे हैं उस कंटेंट को, तो कहीं ना कहीं उनकी भी तो तैयारी थी, इसीलिए तो आप तक वो पहुंची। तो आप रिसर्चर के तौर पर और साथ ही आप तैयारी कर सकते हैं कंटेंट डेवलपर के तौर पर भी। एजुकेशनल जो संस्थान हैं या फिर कहें कि कुछ ऐसी गतिविधियां जो वो कर रहे हैं जिनमें कि पाठ्यक्रम और शैक्षणिक सामग्री तैयार करने का काम होता है, तो वहां पर आप हिंदी भाषा के कंटेंट डेवलपर के तौर पर कार्य शुरू कर सकते हैं।

आकाशवाणी एफएम रेनबो सुन रहे हैं आप 102.6 की फ्रीक्वेंसी से। कार्यक्रम है अल्फा जैन और बात कर रहे हैं हिंदी भाषा में करियर की उड़ान विषय को लेकर। मैं हूं आपके साथ सृजन। और देखिए, वक्ताओं की ताकत है भाषा और लेखक का अभिमान है भाषा। भाषाओं के शीश पर विराजमान है मेरी प्यारी हिंदी भाषा, इसलिए तैयारी कीजिए और नए करियर आपका इंतजार कर रहे हैं। बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।

0: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।

0: रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
2: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
3: शो अल्फा जेन जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 की फ्रिक्वेंसी से अपनी दोस्त रिजन के साथ बात कर रहे हैं हिंदी भाषा में करियर की उड़ान को लेकर। तो श्रोताओं, हिंदी में गुनगुनाएं, संस्कृति को अपनाएं और अपनी पहचान बढ़ाएं, गर्व से बोलिए कि हम हिंदी भाषी हैं। तो चलिए कुछ और करियर्स को देखें। तो आप हिंदी भाषा के ज्ञान के साथ सरकारी सेवाओं में भी जा सकते हैं हिंदी अधिकारी, हिंदी ट्रांसलेटर के तौर पर आप कई मंत्रालयों में या फिर जो सार्वजनिक उपक्रम है वहां पर काम कर सकते हैं, और साथ ही राजभाषा अधिकारी के तौर पर बैंक्स, रेलवे या फिर रक्षा सेवाओं में भी, जहां हिंदी भाषा की सही जानकारी के साथ आप जुड़ सकते हैं। आप सिविल सर्विसेज और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, इनकी भी तैयारी कर सकते हैं। यूपीएससी हो गया, चाहे हम राज्य पीएससी देखते हैं, इन सभी में हिंदी माध्यम से पढ़ने वाले छात्रों को विचारों का स्पष्ट रूप व्यक्त करने में मदद मिलती है। साथ ही जब आपकी भाषा पर पकड़ मजबूत होती है तो आप निबंध लेखन अच्छा कर सकते हैं, साक्षात्कार लेखन, उत्तर लेखन में, ये सभी जहां पर की हिंदी लिखकर आप अपना दबदबा बना सकते हैं, आपकी सफलता की संभावनाएं और बढ़ जाती हैं। सुनते रहिए हमारे साथ आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 की फ्रीक्वेंसी से।

आकाशवाणी एफएम रेनबो सुन रहे हैं, कार्यक्रम है अल्फा जेन। बात कर रहे हैं हम हिंदी भाषा में करियर की उड़ान को लेकर। तो श्रोताओं, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिए को शूल। जी हाँ, जब तक आप अपनी भाषा से, अपनी अपनी उस भाषा से जिसे कि आप व्यक्त करते हैं, आप अपनी भावनाओं को, दिल के एहसास को जिसमें व्यक्त करते हैं, उससे आपका प्रेम नहीं बढ़ जाता, तब तक आपकी उन्नति में कहीं ना कहीं बाधा बनी रहेगी। तो हम बात कर रहे हैं करियर की उड़ान को लेकर। तो आप जो है कुछ और करियर चुन सकते हैं, आप विज्ञापन और मार्केटिंग में जा सकते हैं। यदि आप अपनी भाषा में चीजों को बेचना जानते हैं तो आप ग्राहकों के दिल को भी जीत सकते हैं। आप तैयारी कर सकते हैं एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट, हिंदी में अपनी आवाज को देना, डबिंग या फिर कुछ भी ऐसा जहां की भाषा की आवश्यकता है, आप जुड़ सकते हैं वहां पर। और साथ ही अगर क्या क्या तैयारी करनी है आपको, इस पर बात करें तो आपको भाषा का मजबूत ज्ञान अपने लिए तैयार करना है, चाहे वो व्याकरण हो, शब्दावली हो या फिर सही भाषा शैली, आपको सही सही सब कुछ सीख लेना है। आपको डिजिटल साक्षर भी होना है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर काम करने की, तो डिजिटल साक्षरता तो बनती है। आपके स्किल्स मजबूत होने चाहिए, विचारों को स्पष्ट और आत्मविश्वास, साथ ही प्रभावी रूप से कहना आपको आना चाहिए। तैयारी कीजिए और बिल्कुल आप भी अपने करियर को नई ऊंचाइयां दे सकते हैं हिंदी भाषा के साथ।

बात तो बिल्कुल सही है, नहीं लगता नहीं लगता, और आपके बिना, आपसे मिले बिना कहाँ हमारा भी दिल लगता है, लेकिन जाना तो पड़ेगा। ये हॉट सीट जिसके लिए तैयारी करके बैठी हैं सुषमा शर्मा, अगला प्रोग्राम सेटेलाइट्स लेकर आएंगी, और मिसेज मसाला मिक्स 6:02 पर सुनिएगा भगवती के साथ। तो यूं ही बने रहिए आकाशवाणी FM रेनबो, दिल से दिल तक 102.6 की फ्रिक्वेंसी पर। अपने साथ अपनी दोस्त दिल्ली की चाशनी कृष्णजन को फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।

के आगे गराज, गराज के ये मैकेनिक। देखो मुझे पापा ने तेरे कहा, ओ सुन ले रानी, जैसे भी हो शादी तुमसे।

0: फिर दंगर दंगर दंगर दंगर दंगर दंगर दंग
1: बाद में
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हो रही है। यह विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करता है। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी पाए गए अपराधियों की संपत्ति की जब्ती के कठोर दंड शामिल हैं। मामलों के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने के लिए

0: विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष त्वरित न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान है। अपराधों की जांच पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। अभियोग पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त किए जाने चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नया विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने के संकल्प की पुष्टि करता है। कांग्रेस और यूपीए शासनकाल में हुई कई परीक्षा लीक की घटनाओं का जिक्र करते हुए श्री सिंह ने कहा कि इन मामलों से निपटने के लिए कोई व्यापक कानून नहीं था। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित हो रही है। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। उधर राज्यसभा में हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही कल तक स्थगित कर दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज गैर आपराधिक रिकॉर्ड वाले 18 वर्ष से कम आयु के प्रदर्शनकारी छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। पीठ ने दिल्ली सरकार को दर्ज एफआईआर की जांच जारी रखने की अनुमति दी है, लेकिन कहा कि कार्यवाही लंबित रहने के दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे तथाकथित विधानसभा चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे को छिपाने और क्षेत्र में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को भी छिपाने का प्रयास बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इसे दिखावटी चुनावी प्रक्रिया बताया। श्री जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न और अविभाज्य अंग हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति पद पर 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में वर्चुअल माध्यम से विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि पिछले 4 वर्षों में समावेशी विकास के साथ साथ भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और आत्मगौरव की भावना पुनर्जीवित हुई है। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार का प्राथमिक उद्देश्य पूरे देश में भारतीयता की भावना को और मजबूत करना है। भारत की पहली सीधी वाणिज्यिक कंटेनर मालवाहक रेलगाड़ी नेपाल पहुंच गई है। इससे रेल आधारित सीमा पार माल ढुलाई में एक नया अध्याय शुरू हो गया है। कैनोला की खेप ले जा रही 40 वैगनों वाली इस रेलगाड़ी ने संशोधित भारत नेपाल रेल पारगमन प्रोटोकॉल के तहत अपनी यात्रा पूरी की। चीन के हांगझोऊ में आईएसएसएफ निशानेबाजी विश्व कप में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लो ने कांस्य पदक जीत लिया है। उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में ये पदक हासिल किया। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर है। वायुसेना की टुकड़ी ऑस्ट्रेलिया में रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के साथ युद्धाभ्यास पिच ब्लैक 2026 में भाग ले रही है। इसमें कुल 21 देश शामिल हैं। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि डार्विन के प्रसिद्ध मिंडल बीच पर राफेल विमानों की उड़ान के साथ अभ्यास शुरू हुआ। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: The Lok Sabha has taken up the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 for consideration and passing. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. The legislation incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and the seizure of the properties of convicted offenders. Moving the bill, Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Dr. Jitendra Singh said, taking cognizance of the recent incidents of the paper leak, the Prime Minister himself decided that there is a need to further strengthen the legal framework to prevent malpractices.
2: You must compliment Prime Minister Modi and this government. It has finished an unfinished task which you should have accomplished. In 2024, this bill was brought in to reassure the students that their future is safe. So we learned from the experience of the 2024 Act and the subsequent sequence of events, like any responsible government should do. And therefore, this amendment is being brought in to make the law more stringent, and to ensure speedy justice, so that the credibility of all these exams gets enhanced and gets reinstated.
1: Participating in the discussion, Samajwadi Party MP Akhilesh Yadav questioned the government's decision of recruiting official through outsourcing in the National Testing Agency, which conducts the NEET examination. The discussion is underway. The Rajya Sabha has been adjourned for the day following opposition uproar over alleged police action during students' protest over NEET issue. When the House met after the first adjournment at 2 p.m., Micro, Small and Medium Enterprises Minister Jitan Ram Majhi introduced the Micro, Small and Medium Enterprises Development Amendment Bill 2026. The bill aims to further amend the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006. During the introduction of the bill, the opposition members started sloganeering over the alleged police action against students. As the uproar continued, Deputy Chairman Harivansh adjourned the House till tomorrow to meet again at 11 a.m. India has termed the so-called Legislative Assembly elections being conducted in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir POJK an attempt by Pakistan to camouflage its illegal occupation and hide its grave human rights violations in the region. Briefing media in New Delhi this afternoon, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal called it a cosmetic electoral exercise and said that Jammu, Kashmir and Ladakh are integral and inalienable parts of India. Mr. Jaiswal said that the ongoing mass protests in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir are the direct consequence of Pakistan's economic exploitation, its denial of the people's fundamental rights and its administrative oppression. At least 20 people were reportedly killed and several others injured during a long march organized by the Joint Awami Action Committee in POJK. According to reports, many of the injured are in critical condition and the death toll is feared to rise. The Supreme Court today observed that recent nationwide protests over the NEET paper leak warranted a thorough, fair and impartial investigation into the allegations of injuries to the students and police officials. It also directed the release of minor student protesters arrested during the demonstrations and having no previous criminal records. The court asked the authorities to preserve electronic and digital evidence relating to the protests. The three-judge bench headed by Chief Justice Suryakant was hearing a batch of petitions alleging excessive use of police force during the demonstrations. The Indian Railways has sanctioned the project worth 163 crore rupees for upgradation of the electric traction system on the Parbhani Mudkhed double line section in Nanded division of South Central Railways. The project includes conversion of the existing 1 by 25 kilovolts electric traction system to a more advanced 2 by 25 kilovolt system. In shooting, India's Sonam Uttam Maskar and Himanshu Dhillon secured the bronze medal in the 10-meter air rifle mixed team event at the ongoing ISSF World Cup in Hangzhou, China today. And that is the end of this news bulletin.
3: মিডিয়াম ওভাৰ 289.9 মিটাৰত কিলোহাৰ্জ 1035 আৰু ডি আৰ এম ফ্ৰিকুৱেঞ্চিৰ 1026 কিলোহাৰ্জত এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ প্ৰিয় শ্ৰোতা, আমাৰ এতিয়াৰ প্ৰচাৰণ সূচীৰ বিভিন্ন দায়িত্বত আছে নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষত ধীৰাজ বৈশ্য, মনোজ হাজৰিকা, আনোৱাৰ আলী আৰু আয়ুষ্মান জেইচি, ট্ৰান্সমিটাৰত ৰমেন কুমাৰ শৰ্মা আৰু বিজিত শৰ্মা, ডিউটি ৰুমৰ সহায়কাৰী ভৱেন শৰ্মা, আৰু ষ্টুডিঅ'ত মই নিখিল ৰঞ্জন বৰুৱা। এতিয়া আগবঢ়াইছো যুৱক যুৱতীসকলৰ উদ্দেশ্যে প্ৰচাৰিত অনুষ্ঠান যুৱবাণী।

0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ প্ৰেছৰটা ক্ষণ সময়ৰ পাছতে অৰ্থাৎ ছয় বজাৰ পৰা ক্ৰমে হিন্দী আৰু ইংৰাজীত বাতৰি দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মই বিশাল শৰ্মা। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2024 पर इस समय लोकसभा में चर्चा हो रही है। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी पाए गए अपराधियों की संपत्ति की जब्ती के कठोर दंड शामिल हैं। मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश में दैनिक सुनवाई के लिए विशेष त्वरित न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान है। अपराधों की जांच पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। अभियोग पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त किए जाने चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नया विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने के संकल्प की पुष्टि करता है। कांग्रेस और यूपीए शासनकाल में हुई कई परीक्षा लीक की घटनाओं का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि इन मामलों से निपटने के लिए कोई व्यापक कानून नहीं था। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित हो रही है। राज्यसभा में हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही कल तक स्थगित कर दी गई। सर्वोच्च न्यायालय ने गैर आपराधिक रिकॉर्ड वाले 18 वर्ष से कम आयु के प्रदर्शनकारी छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हाल के राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है कि स्कूल के शिक्षकों को सौंपे गए चुनाव संबंधी कार्य असहनीय बोझ न डालें। न्यायालय ने कहा कि आयोग की संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग कक्षा शिक्षण को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किए बिना किया जाना चाहिए। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे तथाकथित विधानसभा चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को छिपाने का प्रयास बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यह बात कही।
2: हमने पाक अधिकृत कश्मीर में सो कॉल्ड इलेक्शंस के बारे में खबरें देखी है। इस मसले पर भारत का पक्ष साफ और निरंतर रहा है। जम्मू कश्मीर लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका पूरा भूभाग भारत का अभिन्न और अविच्छेद्य अंग है। वहां चल रहे लीपा पोती वाले इलेक्शन, पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर का अपने अवैध कब्जा और वहां के लोगों का मानव अधिकार का हनन कुछ छिपाने का प्रयास है।
1: भारत की पहली सीधी वाणिज्यिक कंटेनर मालवाहक रेलगाड़ी नेपाल पहुंच गई है। इससे रेल आधारित सीमा पार माल ढुलाई में एक नया अध्याय शुरू हो गया है। कैनोला की खेप ले जा रही 40 वैगनों वाली इस रेलगाड़ी ने संशोधित भारत नेपाल रेल पारगमन प्रोटोकॉल के तहत अपनी यात्रा पूरी की। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP के अनुसार इस वर्ष जून में भारत के औद्योगिक उत्पादन में सालाना आधार पर 7.3% की बढ़ोतरी हुई है। इससे पहले मई में विकास दर को थोड़ा कम करके 5% बताया गया था। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने कहा कि जून महीने में सभी 4 बड़े क्षेत्रों में सकारात्मक वृद्धि देखी गई है। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 70 अंक गिरकर 76,766 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 11 अंक कम होकर 23,985 पर आ गया। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों की तैराकी स्पर्धा में श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। श्रीहरि नटराज ने 100 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में 13वें स्थान पर रहते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। सेमीफाइनल देर रात खेला जाएगा। चीन के हांगझोउ में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लो ने कांस्य पदक जीत लिया है। उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में ये पदक हासिल किया। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ইমান পৰে শ্ৰোতাসকলে ভজন অনুষ্ঠানটি শুনিলে। এই আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। খন্তেক পাছতে 8:45 পৰা সমাচাৰ সন্ধ্যা, 9:00 News@9 আৰু 9:15 স্পটলাইট দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर लोकसभा में चर्चा जारी। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया। महाराष्ट्र, बिहार और असम में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने का आदेश दिया गया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित विधानसभा चुनावों को अवैध कब्जे को छिपाने की कवायद बताया। जून में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 23 महीने के उच्चतम स्तर 7.3% पर पहुंचा। ओडिशा में मूसलाधार बारिश के कारण प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का कहर। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 दिनों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और खेलों में निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर लोकसभा में चर्चा हो रही है। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी पाए गए अपराधियों की संपत्ति की जब्ती के कठोर दंड शामिल हैं। मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश में दैनिक सुनवाई के लिए विशेष त्वरित न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान है। अपराधों की जांच पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर पूरी करनी

0: कानून नहीं था।
1: यू मस्ट कॉम्प्लीमेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड दिस गवर्नमेंट।
2: कांग्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रेय देना चाहिए, क्योंकि हमारी सरकार ने उस अधूरे कार्य को पूरा किया है जिसे पहले ही पूरा किया जाना चाहिए था। वर्ष 2024 में ये विधेयक विद्यार्थियों को ये विश्वास दिलाने के उद्देश्य से लाया गया था कि उनका भविष्य सुरक्षित है। 2024 के अधिनियम के क्रियान्वयन से प्राप्त अनुभवों के आधार पर अब ये संशोधन लाया जा रहा है, ताकि कानून को और अधिक सख्त बनाया जा सके तथा शीघ्र न्याय सुनिश्चित किया जा सके।
1: टू एंश्योर स्पीडी जस्टिस।
0: कांग्रेस के गौरव गोगोई ने सरकार पर शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं होने और वास्तविक सुधार नहीं करने का आरोप लगाया।
3: इस संशोधन वाले बिल का विवरण पढ़ के साफ साफ पता चल जाता है कि ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहिए। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है, क्योंकि ये बिल एक संशोधन बिल है।
0: समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने विभिन्न परीक्षाओं के पेपर लीक पर चिंता व्यक्त की। तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि प्रत्येक विद्यार्थी निष्पक्ष परीक्षा का हकदार है। तेलुगुदेशम पार्टी टीडीपी के लावू श्रीकृष्ण देवरायलू ने कहा कि सरकार ने पेपर लीक मामले को स्वीकार कर लिया है और आवश्यक बदलाव करने को तैयार है। शिवसेना के डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने कहा कि ये ऐतिहासिक विधेयक देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य आकांक्षाओं और प्रयासों को सम्मान देगा।
4: मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पूरी सरकार ताकत के साथ खड़ी है। पेपर लीक की घटनाओं के तुरंत बाद हमारी सरकार ने रिकॉर्ड समय में ऐसे कड़े कानून बनाए जिससे आने वाले समय में पेपर लीक जैसी घटनाएं ना हो। हमारा लक्ष्य सिर्फ अपराधियों को पकड़ना नहीं है, बल्कि बच्चों का कीमती साल बचाना भी है।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित हुई।
5: पिछले 6 दिनों से बार बार सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद आज लोकसभा में भोजनावकाश के बाद कामकाज सुचारू रूप से चला। पहली बार कार्यवाही स्थगित होने के बाद जब दोपहर 2 बजे लोकसभा की बैठक शुरू हुई तो सदन में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू हुई। इससे पहले जब सुबह 11 बजे दोनों सदनों की बैठक शुरू हुई तो विपक्ष के सदस्यों ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। जब राज्यसभा की बैठक पुनः शुरू हुई तो एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। वहीं विपक्षी सदस्यों का विरोध जारी रहने के कारण सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। इस बीच महाराष्ट्र, बिहार और असम में नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने के आदेश दिए गए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के गृह विभाग को निर्देश दिया है कि राज्य भर में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी मामले वापस लिए जाएं। एफआईआर वापस लेने की प्रक्रिया संबंधित अदालतों की अनुमति से शुरू की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAAC द्वारा आयोजित मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। कई घायलों की हालत गंभीर है और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। हाल के दिनों में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे तथाकथित विधानसभा चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को छिपाने का प्रयास बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात कही।
6: हमने पाक अधिकृत कश्मीर में सो कॉल्ड इलेक्शंस के बारे में खबरें देखी है। इस मसले पर भारत का पक्ष साफ और निरंतर रहा है। जम्मू कश्मीर लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका पूरा भूभाग भारत का अभिन्न और अविच्छेद्य अंग है। वहां चल रहे लीपा पोती वाले इलेक्शन पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर का अपने अवैध कब्जा और वहां के लोगों का मानव अधिकार का हनन कुछ छिपाने का प्रयास है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि ओडिशा बंदरगाह पर MV AGN रागनार जहाज पर हुए हमले में लापता हुए भारतीयों की तलाश जारी है।

0: ओडिशा बंदरगाह के पास में जो हुई थी उसमें चार भारतीय नागरिक उस पे सवार थे, दो भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और दो अभी भी लापता हैं। छानबीन चल रही है उनके लिए और वहाँ के जो स्थानीय अधिकारी हैं उनसे हम लोग संपर्क में हैं। साथ ही साथ दो भारतीय जो लापता हैं उनके परिवारजनों के साथ में भी हम लोग संपर्क साधा है।
1: इस वर्ष जून महीने में भारत में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 23 महीनों के उच्चतम स्तर 7.3% पर पहुंच गया। आज जारी आंकड़ों के अनुसार जून महीने में विनिर्माण क्षेत्र में 7.8 जबकि बिजली और गैस आपूर्ति क्षेत्र में 10.6% की वृद्धि हुई। जलापूर्ति, सीवरेज और अपशिष्ट प्रबंधन में 6.1 और खनन तथा उत्खनन क्षेत्र में अपेक्षाकृत धीमी गति से 1% की वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार ने इस वर्ष 1 अगस्त से 30 नवंबर तक देशभर के चीनी व्यापारियों पर भंडारण सीमा लागू करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य जमाखोरी और सट्टेबाजी रोकना तथा उचित मूल्य पर चीनी की लगातार उपलब्धता सुनिश्चित करना है। सभी व्यापारियों को अपने पास उपलब्ध चीनी के भंडार की घोषणा करनी होगी और खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर प्रत्येक सप्ताह स्टॉक को अपडेट करना होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यकाल के आज 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने 5 स्मृति पुस्तकों का विमोचन किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस उच्च संवैधानिक पद को महज सम्मान नहीं बल्कि एक गहन जिम्मेदारी बताया।
2: राज्यों की यात्राओं के दौरान युवाओं से मिलती हूँ तो मैं उन्हें प्रेरित करती हूँ कि वे नैतिक मूल्यों से जुड़े रहें और देश एवं समाज की उन्नति के लिए कार्य करें। महिलाओं से मेरा आग्रह होता है कि वे स्वावलंबी बने और आत्मविश्वास के साथ प्रगति के पथ पर आगे बढ़े। जनजातीय समुदाय के लोगों से संवाद करते समय अनुरोध करती हूँ कि वे अपनी सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करें।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ओडिशा में लगातार मानसूनी बारिश के कारण राज्य की प्रमुख नदियों में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: उड़ीसा में लगातार हो रही मानसून की बारिश की वजह से प्रमुख नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है जिससे बाढ़ का संकट और गहराता जा रहा है। मौसम विभाग ने पश्चिमी उड़ीसा के सुंदरगढ़, संबलपुर, बरगढ़ और झारसुगुड़ा जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है जबकि 13 अन्य जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। रेड अलर्ट वाले जिलों में बचाव और आपातकालीन तैयारियों के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF की टीमें तैनात की गई है। राज्य सरकार ने भरोसा दिलाया है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: केरलम के 10 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।
4: केरल में भारी वर्षा की आशंका को देखते हुए मौसम विभाग ने राज्य के 10 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इससे पहले केवल 6 जिलों में येलो अलर्ट लागू था लेकिन शाम तक विभाग ने 4 और जिलों को अलर्ट की सूची में शामिल कर दिया है। विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना है। ऐसे में लोगों से सतर्क रहने तथा जारी परामर्श का पालन करने की सलाह दी गई है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: इस बीच मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 दिनों के लिए मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लिए इस महीने की 31 तारीख तक मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। दिल्ली सरकार ने आज महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से 2500 रुपया प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। योजना का पोर्टल अगले महीने की 1 तारीख से पंजीकरण के लिए खोला जाएगा। भारत की पहली सीधी वाणिज्यिक कंटेनर मालवाहक रेलगाड़ी नेपाल पहुंच गई है। इससे रेल आधारित सीमा पार माल ढुलाई में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। कैनोला की खेप ले जा रही 40 वैगनों की इस रेलगाड़ी ने संशोधित भारत नेपाल रेल पारगमन प्रोटोकॉल के तहत अपनी यात्रा पूरी की। और अब खेल खबरें। निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने कांस्य पदक जीत लिया है। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में धावक विशाल टीके और तैराक श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। श्रीहरि नटराज ने 100 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में 13वें स्थान पर रहते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। सेमीफाइनल देर रात खेला जाएगा। वहीं धावक विशाल टीके ने पुरुषों की 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में पदक की उम्मीद बनाए रखी है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आज श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी। रविंद्र जडेजा की टीम में वापसी हुई है। श्रृंखला का पहला मुकाबला 15 से 19 अगस्त जबकि दूसरा 23 से 27 अगस्त के बीच खेला जाएगा। आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं ने एम्स नई दिल्ली और इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज के सहयोग से स्ट्रोक के बाद होने वाले वाचाघात एफेसिया के लिए मेलोडिक इंटोनेशन थेरेपी का पहला हिंदी संस्करण विकसित किया है। ये एक संगीत आधारित उपचार है जो स्ट्रोक के बाद ठीक हुए लोगों को दोबारा बोलने की स्थिति में लाने में मदद करता है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर लोकसभा में चर्चा जारी। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया। महाराष्ट्र, बिहार और असम में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने का आदेश दिया गया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित विधानसभा चुनावों को अवैध कब्जे को छिपाने की कवायद बताया। जून में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 23 महीने के उच्चतम स्तर 7.3% पर पहुंचा। और खेलों में निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अनुजा कुमार विद न्यूज एट 9। The headlines. Lok Sabha discussing bill proposing stricter punishment and setting up of fast-track courts in paper leak cases. Government says new legislation reflects resolve to protect students' future. Opposition stresses on wider reforms. Supreme Court orders release of minor students arrested during protests on NEET paper leak issue. Maharashtra, Bihar and Assam orders withdrawal of cases against students. 20 people killed in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir in firing on protesters. India terms so-called assembly polls in POJK a cosmetic exercise to camouflage illegal occupation. Industrial output growth hits 23-month high of 7.3% in June. Odisha faces flood fury as heavy rains swell major rivers. Red alert for extremely heavy rainfall over Chhattisgarh, Madhya Pradesh and Vidarbh region for next 2 days. And at ISSF Shooting World Cup, Indian pair of Sonam Uttam Maskar and Himanshu Dhillo clinch bronze medal in 10-meter air rifle mixed team event. And now the news in detail. The Lok Sabha is holding discussion on the bill proposing stricter punishment and setting up of fast-track courts in paper leak cases. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. The Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and the seizure of the properties of convicted offenders. To ensure the expeditious disposal of cases, the legislation mandates that every state government and union territory administration establish special fast-track courts for the day-to-day trial. Moving the bill, Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions Dr. Jitendra Singh said the new legislation reflects government's resolve not to allow anyone to compromise with the future of the youth of the country.
6: You must compliment Prime Minister Modi and this government. It has finished an unfinished task which you should have accomplished. In 2024, this bill was brought in to reassure the students that their future is safe. So we learned from the experience of the 2024 Act and the subsequent sequence of events, like any responsible government should do. And therefore, this amendment is being brought in to make the law more stringent, A, and to ensure speedy justice, so that the credibility of all these exams gets enhanced and gets reinstated.
5: Participating in the discussion, Congress MP KC Venugopal stressed the need for wider educational reforms and comprehensive changes in the examination system.